भाई सूरज तो रोज उगता है, लेकिन भोर सुहानी सिर्फ उनके लिए होती है जो उठकर नई उम्मीदों के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं। जी हाँ, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब भी मन थोड़ा उदास हो, गहरी सांस लें और खुद से कहें, आप हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। फिर देखिए ये प्रकृति और ये मौसम भी किस तरीके से आपके साथ साथ गाता है और झूमता है।

फूल, रंग, धूप और मुस्कान। हमेशा याद रखिए, आप स्वयं में ही एक उत्सव हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन में आनंद और रस बना रहना चाहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नहीं अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में

0: इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery-cum-petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. The monsoon session of Parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait, Andaman from today

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

एफएम रेनबो 101.9 रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ। मैं हूं श्रेत आपके साथ और अगले कुछ घंटे मैं आप ही के साथ रहूंगा। आपको एंटरटेन करने की पुरजोर कोशिश में मैं आ चुका हूं, लेके आया हूं बहुत सारी ऐसी खबरें, ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ये गाने जो आपके दिल के बेहद करीब है। द फर्स्ट वन, जी हाँ, जो संडे की सुबह का जो पहला गाना है वो है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड।

0: तो सब सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ। मैं हूं श्रेत आपके साथ और संडे की सुबह और क्या कमाल का मौसम हमारे शहर हैदराबाद का। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि बस इसी चीज़ का इंतज़ार था पिछले कुछ महीनों से, जब वो गर्मी हमारे को ऐसे बार बार ऐसे कह रही थी कि आप जल्दी अंदर जाओ, मतलब ठंडा ठंडा पानी पियो, एसी में बैठ जाओ। पर अब जो है सब बंद हो चुके हैं, एसी वैसे सबने बंद करके रख लिया, क्योंकि ये जो मौसम है इसे इंजॉय करना अपने आप में एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है। और इनके साथ साथ अगर कहीं घूमने जाते हैं वो खूबसूरत सी वादियों के आसपास, थोड़ा सा हैदराबाद से थोड़ा वैसे हैदराबाद में अच्छा ही रहता है मौसम, पर थोड़ा और बाहर की तरफ निकलोगे एक 50 किलोमीटर के आसपास तो आपको ग्रीनरी और ज़्यादा नज़र आएगी। और ये सब इसीलिए क्योंकि ये जो खेत है, ये वन है, ये सब बहुत कमाल से बने हुए हैं हमारे लिए, नेचर ने बना के रखे हैं। और आज एक और चीज़ है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ये जो हफ्ता है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है वन महोत्सव वीक के तौर पर। डिड यू नो दोस्तों कि वन महोत्सव, विच लिटरली मीन्स फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, स्टार्टेड इन 1950 अंडर द लीडरशिप ऑफ के एम मुंशी जी, हु वॉज इंडियाज मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। उनका मानना था कि अगर हर सिटीज़न एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो देश का जो एनवायरनमेंट है और फ्यूचर है दोनों स्ट्रांग बन सकते हैं। आज के टाइम में जब टेम्परेचर्स हर साल नए रिकॉर्ड्स बना रहा है और पोल्यूशन हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है, प्लांटिंग अ ट्री इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ गुड हैबिट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है कि नहीं? जी हाँ, हम सब कहते हैं कि सेव नेचर, लेकिन नेचर को सेव करने का सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका क्या है? सिर्फ प्लांट अ ट्री। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा इफ़ेक्टिव तरीका है और वो है प्लांट अ ट्री। एक छोटा सा सैपलिंग आज लगाएं और वही कल किसी को छांव देगा, बर्ड्स को घर देगा, क्लीन एयर देगा और हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको एक बेटर वर्ल्ड भी देगा। और एक बात याद रखिए कि प्लांटिंग अ ट्री इज़ दी ओनली फर्स्ट स्टेप। जी हाँ, उस पेड़ को पानी देना, उसकी प्रोटेक्शन करना और उसे ग्रो होते देखना उतना ही ज़रूरी है जितना एक ट्री को प्लांट करना, क्योंकि एक हेल्दी ट्री ही ये जो प्रकृति है उसका असली सुपर हीरो बनता है। तो उसे सुपर हीरो बनाने में आपका पूरा योगदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वन महोत्सव वीक चल रहा है और इसे और भी जुड़ी हुई बातें हम करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ कुछ ऐड के साथ, फिर उसके उस तरफ होगी बहुत सारी बात आपके साथ, आपके अपने आकाशवाणी हैदराबाद एफ एम रेनबो 101.9 पर। मैं हूँ श्रेत आपके साथ और शो है नमस्ते हेलो आदाब।
1: బ్రో ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो एड कलर्स टू योर लाइफ। दोस्तों साइंटिस्ट सेज दैट स्पेंडिंग इवन 20 to 30 minutes अराउंड ग्रीनरी कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव योर मूड एंड मेक अस फील मोर रिलैक्स्ड। शायद इसी लिए जब भी हम किसी पार्क में वॉक करते हैं या फिर किसी बड़े पेड़ की छाँव के नीचे बैठते हैं तो दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। आपको मिलता है कि नहीं मिलता ज़रूर बताइएगा मैसेज कर, क्योंकि ये जो पेड़ हैं, ये जो वन है, यही तो हमारी ज़िंदगी का एक आधार है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे जो मौसम है वो अच्छे से चलते हैं। और जब से लोगों ने ज़्यादा पेड़ काटने स्टार्ट किए हैं तब से देखते

0: हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव आ ही रहा है प्रकृति में, और हर साल गर्मी जो है नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। अभी हाल ही में हमने दुनिया भर से वीडियोस देखे जहाँ पे हमारे देश में तो हम मैनेज करते हैं कहीं ना कहीं, किस सर्टेन लेवल तक हम भी गर्मी को सहन करते हैं, पर दूसरे कंट्रीज़ में जैसे गर्मी अब आने लगी है, वो अपने आप में एक अलग ही माहौल बना हुआ, वहाँ पे कुछ टायर्स पिघल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। पर इन सब के पीछे कहा जाता है कि अगर आप प्रकृति को अच्छे से देख लेंगे, उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो शायद ये चीज़ें सर्टेन लेवल तक हमारे साथ नहीं भी हो। इमेजिन इफ एवरी लिजनर ऑफ FM रेनबो डिसाइड्स की प्लांट जस्ट वन ट्री दिस वीक, सिर्फ एक, हैदराबाद की तस्वीर कितनी बदल सकती है। छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर एक बड़ा चेंजेस जो है लाएंगे और एक नई चीज क्रिएट करेंगे आने वाली जनरेशन के लिए। देर इज अ ब्यूटिफुल कोड दैट सेज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो, द सेकेंड बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज टूडे। दोस्तों, कल का वेट मत कीजिए, आज ही एक पेड़ लगाइए और किसी और को भी इंस्पायर कीजिए। और अगले गाने की तरफ लेके जाने से पहले एक बात मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रकृति हमें मिली है, हमारे एंसेस्टर्स से नहीं मिली, हमने बोरो करी हमारी आने वाली जनरेशन से। अगर आज हम इसे अच्छा रखेंगे, आज हम पेड़ उगाएंगे, आज सब कुछ सुंदर रखेंगे, तो आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए हम एक चीज़ देके जाएंगे। मतलब उनसे हमने मांगा है कि भाई हाँ, आप हमें अपना पहले वाला जीवन दें ताकि हम आने वाले आपके लिए कुछ कमाल कर सकें। और ये बहुत ही कमाल सी चीज़ें जो है हो रही है दुनिया भर में, जिससे कि वन यानी कि प्रकृति यानी कि वन, अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो यकीन मानिए ये आपको वापस रिटर्न में एक्यूमुलेट कर कर ही देगी। मतलब जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट मिलता है, आप बैंक में कुछ अमाउंट जमा कराते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक वैसे ही प्रकृति को भी अगर आप अपना समय देंगे, आप उसका ख्याल रखेंगे, तो आपको वापस एक्यूमुलेट होकर ही मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ हम चलते हैं कुछ और गानों के साथ, तो और उनसे पहले एक ऐड के साथ, ऐड के बाद उस तरफ बहुत से गाने आपके साथ।
1: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
2: Ore, nenu oka letter chala twaraga pampali.
3: Edaina super fast option unda?
4: ఉందిరా బాబు, ఇండియా పోస్ట్ 24 స్పీడ్ పోస్ట్ తీసుకొచ్చింది, అంటే మరుసటి రోజుకే డెలివరీ.
3: నిజంగానా? అంటే డాక్యుమెంట్స్ అయినా పార్సల్ అయినా ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ అయినా ఫాస్ట్ గా చేరుతాయా?
4: అవునరా, రియల్ టైమ్ ట్రాకింగ్ కూడా ఉంటుంది, ధరలు కూడా ఎక్కువ కాదు, ముఖ్యంగా ఓటీపీతో సురక్షిత డెలివరీ. ఇండియా పోస్ట్ మీద టెన్షన్ లేకుండా నమ్మకం పెట్టుకో. మరిన్ని వివరాలకి మీ దగ్గరలో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్ ని సంప్రదించండి లేదా indiapost.gov.in వెబ్సైట్ ని సందర్శించండి.

आज के रोबोटिक्स की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं, और कई सारे ऐसे इवेंट्स भी जो है आसपास होते रहते हैं, और बच्चों को जो है आपको प्रेरित करना है, आपको उन्हें इंकरेज करना है कि जो भी काम वो करें, आप जो चाहते हैं वो नहीं, जो वो चाहते हैं वो करें, और आपको लगता है हाँ ये वाली चीज़ भी अच्छी है, तो आप उन्हें सच में भी सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह से अगर हम सपोर्ट करेंगे यंग जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, तो वो जो नए नए इनोवेशन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और अगर बात की जाए तो बोनालू की बात की जाए तो अपने रूट्स से जोड़ता है, और ये रिमाइंड कराता है कि हमें एक्सप्रेस करना है ग्रैटिट्यूड, सेलिब्रेट करना है अपने कल्चर को, और साथ मिलकर सभी को ये जो फेस्टिवल्स आते हैं इन्हें सेलिब्रेट करना होता है। और यहीं से जो शुरुआत हो जाती है फेस्टिवल्स की, बोनालू होंगे, फिर गणेश चतुर्थी होंगी, फिर बाद में नवरात्र होंगे, दशहरा होगा, कितने सारे फेस्टिवल हैं, अभी हाल ही में ईद भी गई है, तो ये सब कुछ जो है हमारे देश में बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेट किया जाता है। और यही वजह है कि ये सेलिब्रेशन ही जो है एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, और ये फेस्टिवल ही हैं जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। चलिए, कमाल के माहौल के साथ अब चलते हैं कुछ और कमाल के गीतों के साथ। द नेक्स्ट वन इज़ लेविटेटिंग बाय दुआ लिपा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ। और कलरफुल होने वाला है हमारे शहर का जो माहौल है वो भी, क्योंकि आने वाले हफ्तों में, जी हाँ, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं बुनालू का फेस्टिवल, जहाँ पे डप्पू की गूंज होगी, कलरफुल प्रोसेशंस होंगे, डिवोशन का माहौल होगा और दूसरी तरफ बहुत सी इनोवेटिव वाली चीज़ें भी होगी, क्योंकि जिस तरह से बच्चे जो

साहिबा, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग इट वाज। यस दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो एट कलर्स टू योर लाइफ। इंग्लैंड रजिस्टर्ड देयर हाईएस्ट सक्सेसफुल टी20 इंटरनेशनल रन चेज अगेंस्ट इंडिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 191 रन का जो टारगेट था, जो सेकेंड टी20 मैच था इस श्रृंखला का, पाँच मैचेस की श्रृंखला का, जिसमें पहला मैच तो अबंड हो गया था, फिर दूसरा ये मैच था, इसमें 191 के स्कोर को भी इन्होंने हासिल कर लिया और ये अपने आप में एक बड़ी जीत इंग्लैंड की तरफ से हुई। और 1-0 से अभी ये पॉइंट टेबल में दोनों की टैली हो रही है। और अगर बात की जाए तो अब तक यानी 2012 के बाद में, दिसंबर 2012 के बाद में, ये पहली बार है जब इंग्लैंड ने इंडिया के अगेंस्ट में इतने बड़े रन को भी चेज करके दिखाया है। भाई इस मैच के हीरो रहे जेकब, जो इंग्लैंड की तरफ से जिन्होंने 76 रन बनाए 46 बॉल्स में। और अब टीम इंडिया को थोड़ा दमखम ज़्यादा दिखाना होगा, बाकी तीन मैचेस में अगर जीतना है तो बाकी के तीनों जीतने होंगे, या फिर एक अगर और बारिश की वजह से कुछ अगर बंद हो, मैच ना हो पाए, वो एक बात अलग है, बाकी तीनों मैच जीतेंगे तभी जाके ये सीरीज़ जो है टीम इंडिया के हाथ में आएगी। बाकी दमखम तो बहुत दिखा रही टीम इंडिया, होता है ना, कभी जीत और कभी हार तो लगी रहती है। यहाँ पे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, खेल से फर्क पड़ता है, और जब अच्छा खेला जाएगा तो ऑटोमेटिक जीत लिया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया को, और अभी के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक और गाने के साथ। गाने के उस तरफ हम चलेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के साथ, फिर उसके उस तरफ हम चलेंगे न्यूज़ के साथ, फिर उसके उस तरफ नमस्ते हेलो आदाब का ये जो सिलसिला है, ये जो सफ़र है, ये यूँ ही चलता रहेगा।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही है, साथ ही देश को उन्होंने प्रेरणा दी है कि हम आत्मनिर्भर तो हों लेकिन अपनी सेनाओं के बारे में हम और अधिक जानें, उस कार्य प्रणाली को समझें और साथ ही जो हमारे मन में हमारी सेनाओं के लिए सम्मान है, हमारे सशस्त्र बलों के लिए सम्मान है, उसे हम गाढ़ा भी करते जाएं, क्योंकि ये काम आसान तो नहीं है जो हमारे बल, हमारी सेनाएं हमारे लिए करती हैं। हमारे हर पर्व पर एक एहसान हमारे फौजियों का है, वो सीमा पर तैनात हैं, इसलिए हम सीमा के भीतर सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, कैसे होगी, अभी तक हमारी उपलब्धियां क्या हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो। हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। इस समय स्टूडियो में हैं हमारे विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं, वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। कमांडर विक्रमजीत सिंह हैं, नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
2: जय हिंद।
0: जय हिंद सर। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में होंगे साथियों, आपको इनका जवाब आज मिलेगा, बहुत रोचक तरीके से मिलेगा और बेहद साधारण सी भाषा में मिलेगा जो आप और मैं यानी हम सिविलियन आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन

0: पहले मैं आपको सुनवा रही हूं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है। सुनिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: तो सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमें प्रेरित किया है। आइए अब अपने सवाल हम सीधे अपने विशेषज्ञों तक लेकर जाते हैं और इनके जवाब जानते हैं। तो संजय मेस्टन सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है?
2: पहली बात धन्यवाद और जय हिंद। आपके इंट्रोडक्शन में दो मेरे को पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे। एक
0: सर,
2: आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि लोगों को फौज के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा
0: सर,
2: आपने ये भी बोला कि हम सिविलियन को पता होना चाहिए। तो एज अ यूनिफॉर्म पर्सन मैं तीनों के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि सिविल और यूनिफॉर्म की बात नहीं है।
0: जी,
2: आम तौर पे इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म।
0: जी,
2: क्योंकि घर वाले भी हमारे ना वो शब्द नहीं पसंद करते सिविल। एनीवे, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बोला है, लोगों को भारतीय सेना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार देश में तीन पिलर्स होते हैं, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इकोनॉमिक होता है और डिफेंस, ये सबसे जरूरी तीन चीजें हैं और इकोनॉमी और डिफेंस कोरिलेटेड है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ देशवासियों को पता होना चाहिए कि सेना क्या है। अब आत्मनिर्भरता भारत क्यों जरूरी है, देखिए आपने एक और अच्छा शब्द बोला, बहुत सीधी सरल भाषा में हमें बताना चाहिए और वही मैं सोचता हूँ। देखिए आम जनता के लिए यह पता होना चाहिए कि एक डिपेंडेंसी होती है, जैसे कोविड के टाइम में आप देखिए कि जो भी घर में कोई भी फार्मर था या कोई भी इंसान जिसने घर में सब्जियां उगा रखी थी, सब कुछ उगा रखा था, तो उसको क्या है कि कोविड के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दुकान पे, एक ही दुकान पे निर्भर है और वो दुकान भी बंद हो जाती या वो दुकानदार बोलता है मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास स्टोर खत्म हो गया, तो आप सोचिए वो क्या हाल हो जाता है। तो ये छोटा सा मैं घरेलू एग्जांपल दे रहा हूँ। सेना में आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे जवान और ऑफिसर्स वो इक्विपमेंट के साथ लड़ते हैं और वो इक्विपमेंट में एक कॉन्फिडेंस, भरोसा जब आता है, जब हमें पता है ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, जिस टेरेन में हम लोग रहते हैं, जिन पहाड़ों में रहते हैं या जिन कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो कहने का मतलब है आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है और आज जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर देशों में ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है और आज भारत सेल्फ रिलायंट देश है, जो खुद चाहे AI हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉकेट्स हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें एक दिखाता है कि एक कंट्री के अंदर सेल्फ रिलायंस है और एक पावर है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और देश में हमारी सेना को पूरा एक भरोसा होता है कि जो हमें लड़ाई के लिए चाहिए, लॉजिस्टिक्स से लेकर सब कुछ, वो हमें स्पेयर पार्ट से लेकर सब मिलता रहेगा। तो ये है आत्मनिर्भर भारत और ये पिछले मैं बोलूंगा एक डिकेड के अंदर या 10 साल में इसमें बहुत तीव्रता हमने देखी है। तो छोटे से सारांश में ये है आत्मनिर्भर भारत।
0: यानी हमारे पास अपनी बनाई हुई अगर चीजें रहेंगी तो एक तो हमें भरोसा रहेगा कि हमारी जरूरत के हिसाब से है, दूसरा अगर हमें उसके कुछ पार्ट्स चाहिए तो वो

0: हमें समय पर मिलेंगे, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर अश्मिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम मॉडर्न एज में वॉरफेयर्स जो है उसमें काफी बदलाव देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि इन दिनों क्या नई तकनीक आ रही है और क्या भारत में वो उपलब्ध है या अभी भी हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं।
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और जो जनरल साहब ने बताया और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। 1991 में एक पिक्चर आई थी सौदागर, उसमें एक बड़ा इंटेंस डायलॉग था
0: जी,
1: राजकुमार जी का और उनके साथ दिलीप कुमार जी,
0: जी।
1: तो उस डायलॉग को वो ऐसे शुरू करते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
0: जी,
1: ये वो वक्त आ गया है जिसको मैं कहता हूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस वक्त के अंदर हम जिस तेजी से इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं
0: जी,
1: उसका आने वाले 10 साल में बहुत फायदा होगा। आपने बताया जो युद्ध में टेक्निक्स चेंजेस आए हैं,
0: जी,
1: सबसे पहला चेंज आया है कि अब जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गए हैं, यानी कि आमने सामने भी फौजें नहीं आती हैं, लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि जिससे पूरी इकोनॉमी देश की हिल जाती है।
0: जी,
1: आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने ईरान का देखा, आपने देखा कि पहले तो फाइटर जहाज टैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब ड्रोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ना केवल लंबी दूरी से अटैक लेकिन बहुत सस्ते सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए भी
0: जी,
1: उतनी भारी इकोनॉमिक डैमेज, रिफाइनरीज पे आग, गैस के एरियाज, प्रोडक्शन साइट जैसे रास लाफान था उसके ऊपर हमला कतार के अंदर, तो उसका देखिए 3 से 8 साल लगेंगे उसको वापस 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में आने के लिए, कितना बड़ा पूरे विश्व के लिए वो नुकसान है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम भी हैं ये भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट कर सकते हैं। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है आज के जमाने के अंदर, हम जब इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी महंगी होती है। अब देखिए हम रफाल जहाज लेना चाहते हैं 114, 3.25 लाख करोड़ के हैं ये, 3.25 लाख करोड़ के, कितना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $40 बिलियन के करीब चला जाएगा दूसरे देश में फ्रांस के अंदर। तो अगर हम इंडिजिनाइजेशन बढ़ाते हैं, आपको बड़ी अच्छी चीज मैं जनरल साहब ने जो इनकी आर्मी ने की है, 91% एम्यूनिशन जो है आज इंडिजिनाइज हो गया है, यानी कि भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है 175 में से 159 डिफरेंट टाइप की एम्यूनिशन वो आज भारत के अंदर ही बनती है। और पिछले अगर हम दशक में देखें उससे पहले, तो उस दशक के अंदर हम देखते थे कि हमारी जो इंपोर्ट थी वो 70% थी बाहर से, आज 62% हम भारत के अंदर ही प्रोक्योरमेंट जो है भारत के अंदर ही बनाते हैं। 1.54 लाख करोड़ पिछले साल का था डिफेंस प्रोडक्शन, इस साल का है 1.78 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 23,622 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़, यानी कि 63% बढ़ गया है, और आने वाले समय में 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ना केवल फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज बना भी रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से। और लास्ट चीज जो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट, सोचिए सैकड़ों आज इंडस्ट्रीज बन गई हैं, एमएसएमईज बन गई हैं, जो गवर्नमेंट की अदिति पॉलिसीज हैं, आईडेक्स पॉलिसीज हैं, या दूसरे जो प्रोत्साहन के मटेरियल हैं, या जो हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने बताया ना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे C295 एयरक्राफ्ट, उससे 15,000 जॉब्स बढ़े हैं, उसी तरीके से ब्रह्मस से 25,000 बढ़े हैं, दूसरे बड़े बड़े LCH प्रोजेक्ट है उससे भी 20,000-25,000 जॉब्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1,10,000 जॉब्स हमको सिर्फ दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यूपी और तमिलनाडु है 2027 तक वहां पे बढ़ेंगे, तो पूरे देश के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं जब हम इंडिजिनाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को।
0: जी, यानी हम स्वदेशी को बढ़ावा तो दे रहे हैं हर फ्रंट में, लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात करते हैं तब भी बहुत सारे फायदे उसके हैं, और डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी लाभ मिलता है, और पूरा एक इकोसिस्टम है जो मजबूत होता है। जी, आपने फिल्म के डायलॉग से शुरुआत की थी, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कौन सा गाना हम यहाँ श्रोताओं को सुनवाएं।
1: देखिए बहुत अच्छा एक शब्द है, मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को सुनाइए। देव सेवा पर मोहे अहे शुभ कर्म ते कभो न टरो न डरो असो जब चाहे लरो निश्चय कर
0: अपनी जीत करो। जी, हमारे स्कूल्स में ये प्रार्थना भी होती थी और

0: इस शब्द के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की बात की और साथ ही इसके महत्व को समझने के लिए भी हमें प्रेरित किया। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में है। अब मैं कमांडर बिक्रमजीत सिंह से जानना चाहूंगी, सर आप नौसेना में स्वदेशीकरण को किस तरह से देखते हैं और क्या इसका महत्व है?
1: पहली बात तो जय हिंद आपके सारे श्रोताओं को। नौसेना, मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा कि नौसेना वॉज द फर्स्ट मूवर, यानी कि प्राथमिक जो कदम लिए गए वो नौसेना में लिए गए एज फार एज इंडिजनाइजेशन इज कंसर्न। देखिये, हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे, जब हमें आजादी मिली थी 47 में, तो हम लोग ऑब्वियसली एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उनके कुछ एसेट्स हमारे पास 30-35 जहाज उस टाइम भारतीय नौसेना को मिले। मोस्टली वो ब्रिटिश ओरिजिन ही जहाज थे। उधर से जो नेवी शुरू होकर आज अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 150 से ज्यादा जहाज हैं, जिसमें से आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा हमारे जहाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। तो अगर आप नेवी का रोल देखते हैं, आप हिस्ट्री देखेंगे, तो कैसे हमारे एसेट्स बढ़े। मतलब 1960 में हमारे पास विक्रांत आया, पहले वो भी एक इंग्लिश ओरिजिन जहाज था
0: जी।
1: उसके बाद हमें रशियन से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई 60 के दशक में, उन्होंने हमें सबमरीन दिए, उन्होंने हमें कोई और वेसल्स दिए, लेकिन 70 और लेट पार्ट ऑफ 70s में हमने अपना स्वदेशीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था
0: जी।
1: हमने गिरी क्लास शिप्स बनाए, उदयगिरी क्लास जो थे, नीलगिरी क्लास शिप्स, लियांडर्स थे वो ब्रिटिश डिजाइन के, लेकिन वो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने गोदावरी क्लास शिप बनाने शुरू किए और धीरे धीरे धीरे हमारी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे धीरे मच्योर होती रही कि, और आज ये हाल है कि आप हर एक 40 दिन में, आप मान के चलिए 6-7 हफ्ते में हम एक शिप लॉन्च कर रहे हैं इस स्पीड पे। और अभी आपने रिसेंटली देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 शिप एक दिन पे जो कमीशन किए हैं वो अपने आप में हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि 3 बड़े जहाज, छोटे जहाजों की बात नहीं हो रही है, दूनागिरी जो एक फ्रिगेट है खुद ही 7,000 टन के करीब उसकी डिस्प्लेसमेंट, संशोधक सर्वे वेसल लार्ज वो भी 2,500-3,000 की उसकी डिस्प्लेसमेंट, अग्रे

0: मिसाइल, जो हमारा शैलो वाटर क्राफ्ट, तो इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। ये मैं आपको कहना चाहूंगा नीलम जी, जब हमने 1990 में जब हमने फौज ज्वाइन की थी, तो सारे हमारे एसेट्स मोस्टली तो रशियन ओरिजिन थे या कुछ ब्रिटिश थे जो कि अपने लास्ट लेग ऑफ द सर्विस में थे, क्योंकि ये जो हमारे शिप्स होते हैं इसमें इसकी लाइफ करीब 25 से 30 साल आप मान के चलिए।
1: हम्म,
0: देखिए नेवी में एक और बड़ी खास चीज है कि वो सारी सर्विसेज की जो है उसका एक तरह से मिलन है या एक तरह से मिलोंजे है जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए लैंड यूनिट्स भी हैं, हमारे पास एयर यूनिट्स भी
1: एयर
0: हैं,
1: यूनिट्स भी हैं।
0: हमारे पास सर्फेस यूनिट्स हैं
1: जी
0: और हमारे पास सब सर्फेस यूनिट्स हैं, यानी कि हम चारों डायमेंशन में नेवी जो है वो अब देश की सेवा में और देश की हिफाजत में जुट है। तो इसमें मैक्सिमम जो इंडिजनाइजेशन आप देख रहे हैं अभी, वो हमारे सरफेस यूनिट्स में बहुत इंडिजनाइजेशन एडवांस हो गई है।
1: जी
0: जबकि यू नो आजकल तो ऐसा है कि आप 60 से 70% के बिना तो आप एक शिप बना ही नहीं सकते, वो आपका मैंडेटरी है, आपको उतना तो इंडिजनाइजेशन कंटेंट रखना ही रखना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसी सवाल के उसमें नीलम जी, के एक शिप में बनाने के तीन मुख्य पार्ट होते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक हम कहते हैं फ्लोट, यानी शिप को तैरना होता है जरूरी,
1: जी
0: जो उसकी बॉडी होती है हल होता है। दूसरा होता है उसका मूवमेंट, यानी शिप को आपने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना,
1: जी
0: उसके लिए आपको इंजन चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, इत्यादि जो भी इक्विपमेंट चाहिए। और तीसरा होता है लड़ना, कि आपने मिसाइल डालने हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर कैपेबिलिटी क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी क्या है। तो वो सबसे मुख्य पार्ट है,
1: जी
0: क्योंकि फाइनली ये सारे वॉरशिप हैं और इनका मेन काम है लड़ना।
1: लड़ना
0: लेकिन
1: जी
0: इन सब में आज की डेट में जो हमारा फ्लोट में हमने करीब 90% इंडिजनाइजेशन हो गया है, और फाइट में हमारी थोड़ी कैपेबिलिटी अभी इस पे काम करना अभी बाकी है।
1: चोल साम्राज्य के समय से हम अपनी नौसेना पर गर्व करते आ रहे हैं, हमारे जल सीमाओं के प्रहरी, और अब अलग अलग हिस्से हम उसके बारे में सुनते रहते हैं। INS विक्रांत पर तो पूरे देश को गर्व है ही। आपने बताया कि किस प्रकार से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई और लगातार बेहतर होता जा रहा है, तो इसी मोड पर मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगी।
0: नीलम जी मैं चाहूंगा कि आप, ये एक गीत है फिल्म लक्ष्य का,
1: जी
0: क्योंकि हमें अपनी एकेडमी डेज के बारे में और बहुत मोटिवेट करता है। गीत है हाँ यही रास्ता है,
1: जी
0: बहुत ही
1: बिल्कुल
0: मोटिवेटिंग गाना, आई एम श्योर सब लोगों को, सर को और वापस एकेडमी लेके जाएगा ये।
1: जी, तो हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लक्ष्य फिल्म का यही गीत।

0: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के बारे में। हमारे विशेषज्ञ हैं इस समय स्टूडियो में हमारे साथ, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं भारतीय थल सेना से, हमारे साथ हैं एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल वायुसेना से, और कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ हैं नौसेना से। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं स्वदेशीकरण का महत्व और पिछले दिनों क्या बदलाव हुए हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो संजय मेस्टन सर, एक बार फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने क्योंकि सर्विस में रहते हुए बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, वहां के कार्य प्रणाली को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, आप ये बताएं कि जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे ब्लूप्रिंट्स हैं या जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं वो हमें तक रहे, हमें साझा ना करने पड़े किसी के साथ, और जब वो सिर्फ हम तक रहेंगे तो हम उसमें तेजी से बदलाव कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है उसे हम छिपा कर भी रख सकते हैं, क्या एक पहलू ये भी है इसका?
1: बिल्कुल नीलम, एक पहलू वो भी है। देखिए, पहली बात ये, एक जो भी स्वदेशीकरण है ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। देखिए, इकोसिस्टम में बहुत कुछ चाहिए होता है, किसी भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट को बनाना हो, चाहे जहाज को बनाना पड़े, चाहे मिसाइल को बनाना पड़े, चाहे ड्रोन को बनाना पड़े, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक बैटरी चाहिए, पावर, फिर चाहिए आपको, सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में चाहिए है वो है आपको चाहिए हैं ये सेमीकंडक्टर्स, वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, जो चिप्स होते हैं। और ये एक खुद बहुत बड़ा, इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है। आज कोई भी देश विश्व में ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है कि पूरा एक सेमीकंडक्टर चिप वहां पर बन जाए। उदाहरण के तौर पे जो डिजाइनिंग होती है, ये जो चिप डिजाइन, ये स्टार्ट कहाँ होते हैं? अमेरिका में। मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? ताइवान में। उसके पास जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं साउथ कोरिया में। जो चिप की काटना पड़ता है, जो लिथोग्राफी मशीन होती है, वो कहाँ से आता है? नीदरलैंड से। तो ये आप देखिए कितनी इको डिपेंडेंट सिस्टम है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जो एंथ्रोपिक है, ये जो अभी एआई का सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उसमें फेबल 5 और माइथो 5 वो किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके 5-6 देश हैं। तो कुछ जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हर कंट्री अपने देश में रखता है और वो हर देश को अधिकार है, और लेकिन कुछ चीजें जो ओपन डोमेन में है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पहली बात होती थी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनको भी मिक्स करके 7 DPS यूज कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज आई है कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल कर दिया है
0: जी।
1: और इस डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो फिगर आई है 1.78 लाख करोड़ की इस साल, उसमें 24% है प्राइवेट इंडस्ट्री का
0: जी। ट्रिपल पी की हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
1: तो आप देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री, आप याद करिए अमेरिका जैसे है, वहाँ जी है या जितने भी इनके टॉप टॉप कंपनीज हैं सिलिकॉन वाली, वो सब मतलब प्राइवेट प्लेयर्स थे, गवर्नमेंट के तो वहाँ किसी का नाम ही नहीं पता थे। आज इंडिया में भी यही हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक हैदराबाद में कंपनी है, उन्होंने नाग शस्त्र 150 ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। वो उसकी स्पीड मैक्सिमम है 3 to 3 km/h। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाग शस्त्र हमने जो ड्रोन बनाया 150, ये इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और हाँ, दूसरा जो एक और अच्छा सवाल आपने उठाया था और इन्होंने भी बोला था, देखिए जहां तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सवाल है
0: जी,
1: वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो हम दे सकते हैं। लेकिन हर चीज को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे
0: जी।
1: और आपको पता होगा कि जो इस साल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं, वो है मतलब अगर मैं करोड़ में बोलूं तो 38423 करोड़, और ये एक टाइम पे 2000 करोड़ होता था, दैट मीन्स आज से एक डिकेड पहले, तो 19 टाइम्स गुना बढ़ गया है
0: जी।
1: आपको अभी पता है एआई की, अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एआई तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में आ जाती है, उसमें क्या है कि एक हमारी खुद की ऑटोनोमी होनी चाहिए, मतलब टोटल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें हम सॉवरन एआई होना चाहिए, मतलब जो हमारे सर्वर्स, जो हमारे डाटा सेंटर्स, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ वो सॉवरन होना चाहिए।

0: और उस लिहाज से मैं बोलना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें की हैं। देखिए, मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया है, आज हमने माइक्रोन जो सिलिकॉन वैली से है, 800 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात में। और
1: जी
0: ये सारी जो आपके चिप्स वो है, उसमें जो उसकी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग यहाँ पर होगी, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मैं बोलूंगा, क्लीन फैक्ट्री होगी। और सबसे ज़रा आई थिंक वो 5,000 स्क्वायर फीट का वो इलाका है, इतना वो
1: जी
0: बड़ा है।
1: यानी जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, एमएसएमई भी है,
0: बिल्कुल
1: साथ ही एफडीआई भी है, फॉरेन डायरेक्ट
0: बिल्कुल
1: इन्वेस्टमेंट की बात है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने, जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, हमारे नर्सेज थी या और भी इस तरह के हमारे सिटीजन्स थे, उनकी भी मदद की, और हमारे बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी अलग अलग देशों से निकाला। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करें, तो एक आत्मनिर्भर देश एक मजबूत देश भी होता है, आप क्या समझते हैं इस नजरिए से, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है नीलम जी आपने। इसमें बड़ी सारी चीजें आती हैं।
1: जी
2: सब एक बात आपने मेंशन की, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस,
1: जी
2: यानी कि जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो भारत ने उस समय बहुत जल्दी से उनकी मदद के लिए जहाजों में रिसोर्सेज और रसायन भेजे थे।
1: जी
2: आपको याद होगा तुर्की में हुआ था, तब भी हमने भेजे। आपको याद होगा भी वेनेजुएला में जो हुआ इतना बड़ा,
1: जी
2: उसमें भी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 70 टन का करीब जो है रसायन को लेके गए थे इमीडिएट एड देने के लिए। अभी वहां भूकंप के झटके चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जहाज लैंड कर रहे हैं,
1: जी
2: हमारे देश के रसायनों को वहां ले जाके उनकी मदद करे दे रहे हैं, जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं देश का अपना स्टेटस जो होता है वो तभी उभरता है अगर आत्मनिर्भरता हो,
1: जी
2: तभी उभरता है अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो, तभी उभरता है जब हमने 74% FDI बना दिया आज डिफेंस के अंदर, जो आप बात मेंशन कर रहे थे,
1: जी
2: उससे ये हो गया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको जैसे अब हम कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि साफरान के साथ जो इंजन का हम बना रहे हैं 120 से 140 किलोटन न्यूटन। देखिए, सबसे मुश्किल चीज जो है दुनिया के अंदर एरो इंजन बनाना है, वो बहुत कम देश है दुनिया के जो बना सकते हैं। हमारा भी कावेरी इंजन अब बना है, जिसको हम अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जैसे घाटक है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: जी
2: लेकिन जो एक एरो इंजन फाइटर जहाज में, खासकर फिफ्थ जनरेशन या सिक्स जनरेशन जहाज में इस्तेमाल होना है, वो जो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, जापान
1: जी
2: में हो रही है और फ्रांस में हो रही है, वो मिलके भारत बनाएंगे, तो इसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सोर्स कोड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बना हम मिल करके रहे हैं, को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे हमने ब्राह्मोस को डेवलप किया, को डेवलप किया। और एक और चीज आ जाती है, जब हम एक साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के रीजन्स की हम जब बात करते हैं, तो भारत को एक बहुत बड़ा देश की तरफ देखा जाता है,
1: जी
2: जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट जो भारत का है वो सभी को मालूम है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो, या फिर जो बलूचिस्तान में, वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और
1: जी
2: कुछ नहीं है, वो फॉरेन नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इमेज है एज अ स्टेबलाइजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये, तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत हिंदुइज्म या वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मजबूत रहती है, और हम सहायता, यमन में आपने देखा
1: जी
2: सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को। अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई।
1: जी
2: ये है 2005 की, कॉन्गो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबिलाईजेशन मिशन चल रहा था, वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं इस
1: जी
2: समय। सबसे ज्यादा 5,600 जो हैं बांग्लादेश से हैं, 5,200 से 500 भारत के हैं, और 2,600 के करीब हैं पाकिस्तान के। उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया

0: उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कॉन्गो के अंदर। तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको। उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर। वो बेचारे फंस के, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। और भारत के जो MI-25-35 अटैक हेलीकॉप्टर है वो गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा, फिर हमारे MI-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअल इवैक्यूटीज या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके आए ताकि उनको बचा सके। ये है भारत। हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है। मदद में जब भी कोई पुकार करता है सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे होते हैं, भारतीय सेना वहां पे कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे हो।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे। और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर विक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम दो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी। देखिए, हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी, तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी जैसे आपने बताया, और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके। क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के MSME सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं, डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, अगर आप वेस्ट में देखें महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा, तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहां पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे DPSUs में, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफकोर्स हमारा PSU शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में। तो 4 DPSU है, 1 PSU है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो एक MIV दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहां पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है, 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम top 10 नेशंस में आ जाए। तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने, 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के, कि हम top 5 नेशंस में आ जाए। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं, जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे ब्राउन फील्ड हो, ग्रीन फील्ड हो, उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयरमार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है। किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था वो बेसिकली पहले US मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट अब देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया, और कहां वो पहुंच गया, सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग, वॉरशिप बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमारे जो मर्चेंट मरीनर्स थे जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे, महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशन

0: में उन्होंने शिप्स को लेके जाते थे, इतनी हाई सीज, रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है। आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड। तो इसको अब हमने बोला था टॉप 5 और टॉप 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े।
1: जी
0: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं, ये इसी की तरफ हैं कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने के लिए। इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने मिलियन टन जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया
1: जी
0: 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं नीलम जी, मैं ये लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए, क्योंकि उसका
1: जी
0: आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो ओईएम्स हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहां आके बनाइए,
1: जी
0: मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उससे जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका फायदा हमें हो सकता है।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है, वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर, मैं आपसे अब आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी जो आप श्रोताओं को सुनवाएंगे।
2: फौजी में इमोशंस बहुत होते हैं,
1: जी
2: तो गाना है संदेशे आते हैं, और इसका
1: जी
2: कारण यह है, ये बॉर्डर पिक्चर का है, और मेरे दोनों छोटे जो बेटे थे उस समय
1: जी
2: वो स्कूल में थे, लेकिन ये मूवी देख के उनको बहुत मोटिवेशन हुआ और आज वो भारतीय सेना में दोनों ऑफिसर हैं।
1: बहुत अच्छी ये बात आपने हमें बताई, हमारे श्रोता जरूर प्रेरित होंगे इस बात को सुनकर। और ये प्यारा सा गाना हम सुनवा रहे हैं अपनी ऑडियंस को।

0: तो जोश जगाते इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे तीन विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की हम बात कर रहे हैं, और अपने विशेषज्ञों के बहाने आज हम अपनी सेनाओं को और नजदीक से जान रहे हैं। जो हमारे मन में आदर भाव है, सम्मान है, वो और बढ़ता जा रहा है ये जानकर कि किस तरह से हमारी सेनाएं लगातार देश की सेवा में लगी रहती हैं और किस तरह से हम जिसे अपना विकास कहते हैं उसमें मील का पत्थर होते हैं हमारे फौजी, हमारी सेनाएं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
1: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है
0: जी,
1: हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में
0: जी,
1: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहाँ बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच बढ़ गई है
0: जी,
1: जो उसके भी कई कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है
0: जी।
1: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है। और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में IMEC कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इसराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक से, अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। मैं तो बोलूंगा जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया, अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एजुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारतीय हूँ। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड्स देखिए फर्क पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी है हमने
0: जी,
1: तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है
0: जी,
1: और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी MSMEs आ चुकी है, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ, AI एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे, और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे AI हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजन्स हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं, तो जहां पर जॉब्स हैं और जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहां सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को, जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना, बाहर जाते थे
0: जी।
1: अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा, इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
0: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर अश्मिंदर ने कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं, जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों

0: मानी जाती है वो।
1: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर वन है।
0: जी
1: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफिशियली गया था ऑन ड्यूटी।
0: जी
1: टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इसराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था, जो चाइना में फर्स्ट SCO पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं
0: जी
1: उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की,
0: जी
1: काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देने में,
0: जी
1: रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है। और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक, से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन, पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें। और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहां 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ आते थे हर कंट्री के साथ। तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की
0: जी
1: बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल रहा हूँ, रेजिमेंटेशन, जितने
0: जी
1: फॉरेन चीफ आते थे इंडिया में, वो बताऊँ क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है,
0: जी
1: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूँ तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है, वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाएंगे। मैं
0: जी
1: वैसे महा रेजिमेंट का हूँ,
0: जी
1: तो महा रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान है उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा।
0: जी
1: तो ये रेजिमेंटेशन है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे, आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो
0: जी
1: ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं, तो
0: जी
1: ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए। और हमने किए हैं चीन के साथ भी, SCO के साथ
0: जी
1: एक्सरसाइज। तो मैं घमंड के साथ बोल सकता हूँ, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है, एज अ फौजी वी आर नंबर वन एंड
0: जी
1: मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस,
0: जी
1: नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेस, इंक्लूडिंग नेवी, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। नेवी के साथ जो वाइजैक में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एक्सरसाइज
0: जी
1: को,
0: इंटरनेशनल फ्लीट
1: उसमें
0: रिव्यू।
1: उसमें ईरानियन शिप भी थी और
0: यूएस
1: यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी
0: जी
1: थी।
0: ऐसे में बताएं, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है, तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है, और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स है, और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी,
0: जी
1: ये बहुत कोरिलेटेड है। और चीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई में के पंगे नहीं फंसेंगे, हम मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। आज भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है। कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमने बाहर से खरीदना है, उसको
0: जी
1: हम इंडिजिनाइज भी कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर अश्विंदर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो SDF अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे। कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना, तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है कि हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
2: देखिए, डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना। अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं
0: जी
2: जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं। अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का। अब उन्होंने

0: कर लिया है कि
1: जी
0: उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजिन्स की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी है.
1: जी
0: आपको ये भी मालूम होगा कि 6th जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं. और
1: जी
0: अगर शिप्स में देखें, वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसमें भी और जो इंजन्स है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है. दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें
1: जी
0: दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो. अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है,
1: जी
0: लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश. कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर -20 -30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर. तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके.
1: जी
0: और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे,
1: जी
0: ऐसा भी नहीं है. क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा, उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सरवाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे हो, चाहे वो
1: जी
0: ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका जोग्राफिकल जो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ. तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए, हमने कई
1: जी
0: बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन लीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए. आज नहीं तो वो खुद अपने आप, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को. इसका
1: जी
0: मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे. एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप
1: जी
0: परमिट करें. एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं. उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 सन्स ऑफ नेशनल डिफेंस, जैसे बेजिंग की यूनिवर्सिटी या बेजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बेजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं
1: जी
0: ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें. तो ये चीज हमने शुरू कर दी है. अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है, और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर. लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा.
1: जी यही कामना सभी की। और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगी।
2: बिल्कुल सही, अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है. ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए.
1: जी
2: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं. जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं.
1: जी
2: फ्रांस बोल रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा. तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं. क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना.
1: जी
2: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर में हम नंबर 1 है, चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें,
1: जी
2: और AI में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं, बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड है. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है, और इसके ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरिन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन

0: ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में। चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है। तो प्लस वन, तो
1: जी
0: प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर। तो उससे क्या फायदा होगा, विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
1: फॉर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा, तो यह है भारत समुद्र से आकाश तक सुरक्षित भी आत्मनिर्भर भी, और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियां, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार कुछ इस तरह मना लेता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की, और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारतीय थल सेना से आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल, वायुसेना से आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई। कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है। और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर
0: थैंक यू
1: आपका।
0: जी, थैंक
1: स्टूडियो
0: यू
1: में
0: सो
1: आने के लिए
0: मच,
1: बहुत
0: थैंक यू
1: बहुत
0: सो मच
1: धन्यवाद।
0: एंड जय हिंद।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स, और कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री

0: जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today sanctioned and released assistance of 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan said that the VBG Ramji Act has successfully transitioned from Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh will be leading the Indian delegation to Geneva, Switzerland from tomorrow to participate in the inaugural United Nations Global Dialogue on AI Governance. India will host the two-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship beginning tomorrow in Kochi, Kerala. Ministry of Women and Child Development said the senior government official.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back. You're listening to Akashwani Hyderabad FM Rainbow 101.9 और शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब. मैं हूँ श्रेत आपके साथ. और क्या और दोस्तों, द सेक्रेट अमरनाथ यात्रा 2026 इज नाउ अंडरवे, drawing thousands of devotees from across the country to the holy Amarnath cave, जो कि है हिमालयाज और जम्मू, हिमालय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के. और यकीन मानिए, क्या कमाल का अरेंजमेंट, क्या कमाल की यात्रा ये अमरनाथ यात्रा, जिसका इंतज़ार पूरा साल भर होता है. हर साल डिवोटीज अंडरटेक्स दिस चैलेंज. जो पिलग्रिम्स होते हैं वो जो यात्रा का जो चैलेंज है वो लेते हैं और ब्लेसिंग लेने की कोशिश करते हैं, लेने की एक चाह के साथ इस यात्रा पे जाते हैं भगवान शिव की. और यहाँ पर जो आइज शिवलिंग जो फॉर्म होता है और वो नेचुरली होता है, और इतना कमाल का ये दृश्य होता है. का माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस समय स्वयं वहाँ पर इस शिवलिंग के रूप में हमें दर्शन देते हैं. और कई सारी ऐसी किस्से हैं, कहानियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो इस जगह को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है. और जितने भी लोग आज तक अमरनाथ यात्रा पर गए हैं, यकीन मानिए उनसे जब पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो उसको सब शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं. ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है. और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इसी जगह पर भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमर कथा यानी कि सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी के बारे में बताया था और पूरी समझाया था. और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है दोस्तों, बल्कि और ना ही सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, जी हाँ, जहाँ पर सिर्फ पहुँचना है और कहना है भाई हम यहाँ पे जाके आ गए, बल्कि फेथ है, पेशेंस है और डिटर्मिनेशन है कि एक इंस्पायरिंग जर्नी है. अगर आप ये अगर आप या फिर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर जा रहे हैं या फिर जाने का प्लान है, आपका भी मतलब ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो आप वेदर अपडेट्स को फॉलो करें, अथॉरिटीज़ की जो गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करें, और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हुए इस यात्रा पर आप निकल पड़ें. भगवान भोलेनाथ जो है सब पर अपनी कृपा बरसाएंगे. चलिए अभी के लिए हम आपको लेके जाएंगे कुछ और गीतों के साथ. मैं हूँ श्रेत आपके साथ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9, रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ.

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो एड कलर्स टू योर लाइफ। और अब अपनी ज़िंदगी में कलर घोलते घोलते वैभव सूर्यवंशी ने कर लिया है डेब्यू इंटरनेशनल क्रिकेट का, यानी कि अपने करियर का मतलब पहला इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेला है और टीम इंडिया के प्लेयर के रूप में इन्होंने डेब्यू किया है। और सबसे यंगेस्ट, अब तक के सबसे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर ये बन चुके हैं। सही सुन रहे हैं आप। और इनकी जो उम्र है 15 साल 99 डेज, जो कल हुआ मैच उसमें इन्होंने डेब्यू किया, और T20 जो मैच था, दूसरा सेकंड T20 मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें इन्होंने अपना डेब्यू किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था शेफाली वर्मा के पास, जिनका जो डेब्यू हुआ था वो 15 साल और 239 दिन 2439 डेज में उन्होंने डेब्यू किया था। अगर मेल क्रिकेटर की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर के पास ये रिकॉर्ड था पहले, जो यंगेस्ट डेब्यूटेंट थे। जब उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तब उनकी उम्र थी, जब उनका एंट्री हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एज थी 16 साल और 205 डेज। तो भाई वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं जो लीग मैचेस होते हैं इंडिया के, उनमें तो उन्होंने कमाल किया ही है। और अब इनके जलवे हमें देखने होंगे कैसे ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक परचम लहराते। बाकी इनकी एंट्री हमेशा सिक्स के साथ ही होती है और बहुत ही दमदार तरीके से निडर होकर ये खेलते हैं, शायद यही इनका स्टाइल है खेलने का। ऑल द बेस्ट है इस कमाल के क्रिकेटर को। और अभी के लिए हम लेके चलते हैं आपको कुछ और गानों के साथ। अगला वाला है टेलर स्विफ्ट की आवाज़ में और ये कहता है

0: Ja.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ और अल्फा। जी हाँ, एक फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई वो अभी उसको मिक्स रिस्पांस मिल रहा है। एक स्पाई यूनिवर्स फिल्म है और इसमें आलिया भट्ट और शर्वरी इसमें नज़र आए हैं और बॉबी देओल भी इस फिल्म में नज़र आए हैं। और फिल्म में जो एक्शन सीन्स हैं वो अच्छे हैं, पर दर्शक जो हैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं कि भाई जाएँ कि नहीं जाएँ, जाएँ कि नहीं, क्योंकि वेदर इतना कमाल का है तो लोग जो है संडे वाले दिन कहीं और घूमने निकल जाते हैं। हाँ, जो फिल्म वाले लोग हैं जो फिल्मी दुनिया को देखना पसंद करते हैं वो अपने आप में इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। बाकी अगर इसके कलेक्शन की बात की जाए तो ये जो प्रोडक्शन है उसकी फिल्म है उसमें उसके मुकाबले जो कलेक्शन होता है अमूमन उससे थोड़ा कम हुआ है इस फिल्म का। पर देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आने वाले दिनों में इस फिल्म को कितना पसंद किया जाता है, कितना दर्शकों की तरफ से देखा जाता है। बाकी ये इस फिल्म के मुख्य किरदार में हैं आलिया भट्ट और शर्वरी, जो कि एक्शन

0: के रूप में नजर आ रही है। खूब सारा एक्शन इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है, जो ट्रेलर्स तो हमने देखे हैं, रिव्यू मिक्स वाले मिल रहे हैं। चलिए, अगर आप भी फिल्म का प्लान बनाया है तो देख सकते हैं। अभी के लिए आपको लेके जाते हैं कुछ और गानों के साथ। मैं हूँ श्रेत आपके साथ, और जो अगला वाला है वो है हरी चरण और श्रेया घोषाल की आवाज में। गाना कहता है तेरे रंग।
1: कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले समाधि प्रेम भंग अंग

Johnny Singer. दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ। जी हाँ, खूब सारे कलर इन बातों के जरिए, इन खबरों के जरिए, इन सब अपडेट्स के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज चलिए सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे ऑफ वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग आइकन्स। जी हाँ, आर वेरी ओन पीवी सिंधु जी। जी हाँ, इनका आज है जन्मदिन। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे पीवी सिंधु। फ्रॉम द बैडमिंटन कोर्ट्स ऑफ हैदराबाद टू द बिगेस्ट इंटरनेशनल अरेनाज, सिंधु हैज शोन द वर्ल्ड दैट ड्रीम कम्स ट्रू व्हेन टैलेंट मीट्स हार्डवर्क। ओलंपिक मेडल्स हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर एशियन गेम्स सक्सेस हो, उन्होंने सिर्फ मैच ही नहीं जीते बल्कि करोड़ों इंडियंस का दिल भी जीता। सबसे इंस्पायरिंग बात तो ये है कि हर सेटबैक के बाद वो और भी मजबूत होकर कोर्ट पर वापस आती हैं। दैट वॉज चैंपियंस डू, दे नेवर

स्टॉप बिलीविंग। और आज इनके जन्मदिन पर हम पीवी सिंधु जी को गुड हेल्थ, कंटिन्यूड सक्सेस और बहुत सारी विक्ट्रीज के लिए हम उन्हें विशेष देते हैं, और इंडिया को वो जितना ऑलरेडी उन्होंने प्राउड करवाया है उससे ज़्यादा भी वो प्राउड कराएं आज तक आज की। जी हाँ, और आज का टेक अवे यही है कि सक्सेस डजंट हैपन ओवरनाइट, इट बिल्ड्स एवरी सिंगल डे विद डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। अगर किसी इंसान के पास डिसिप्लिन हो, डिटर्मिनेशन हो, तो यकीन मानिए उसकी जीत निश्चित है। भले ही थोड़ी देर के बाद में आएगी पर जीत जरूर आएगी, और जब वो जीत आएगी तो वो एक ऐसी पहचान बना के जाएगी कि आपको फिर कोई नहीं हरा सकता, आपको सब जानना स्टार्ट कर देंगे। चलिए इसी कमाल की बात के साथ आपको लेके जाते हैं एक और गाने के साथ, जो ये जो आजकल के जो यंग प्लेयर्स हैं या फिर यंग चैंप्स हैं, जो भी खेल की दुनिया में हो या फिर किसी भी दुनिया में अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनका भी कुछ ऐसा ही नाम हो, उन सभी के लिए ये वाला गाना।

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ। वक्त तो चला है 12:54 और अब 55 मिनट के बस हो गए हैं 55 मिनट भी। इसका मतलब ये है कि हमें एक गाने के साथ जाना है और गाने के उस तरफ जब हम वापस आएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा शो हेलो रेनबो, जिसके ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, शो में अपने दिल की बात बता सकते हैं। टॉपिक पर हम बात करेंगे आज, मौसम बड़ा कमाल का है। पिछले कुछ दिनों से मौसम सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो रखा है, तो आज मौसम से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। सवाल होगा इस गाने के बाद, अभी के लिए चलते हैं इस प्यारे से गाने के साथ, अरिजीत सिंह साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना जो कहता है खैरियत पूछो, बहुत ही कमाल का गाना फ्रॉम द फिल्म छिछोरे। और यकीनन ये गाना हमें यह याद दिलाता है कि आपको आपके आसपास रह रहे लोगों से, आपके उन दोस्तों से खैरियत पूछते रहना चाहिए जिनसे आप कभी मिल भी नहीं रहे, पर पूछते रहो कैसे हो आप, कैसा चल रहा है ज़िंदगी। और जब आप ये पूछोगे ना, वो सामने वाला इंसान बहुत खुश होगा, टेंशन में भी होगा तो वो टेंशन को भूल जाएगा।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM Rainbow 101.9 रेनबो के साथ लाइव रंगीन। मैं हूं श्रेयत आपके साथ और वक्त हो चला है 1:02 और 11 सेकेंड, यानी कि ये हमारे नमस्ते हेलो आदाब का दूसरा सेगमेंट है जिसका नाम है हेलो रेनबो, जिसमें आप से मैं कुछ एक बात पूछता हूं जो आपके दिल के बेहद करीब होती है और आप उसका जवाब मुझे कॉल या फिर मैसेज कर कर देते हैं। कॉल करने के लिए नंबर हैं 0402323 4821, एक और नंबर है 0402323 0030, 0402970 4715। इन तीन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा एक्टिव है एकदम, तो आप वहां पर बहुत सारे मैसेजेस भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर है 0402323 4822। मैं हूं आपका दोस्त श्रेयत और शो है हेलो रेनबो। तो करते हैं आज के टॉपिक की बात।

0: बारिश का मौसम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यादें लेकर आता है। किसी के लिए स्कूल की छुट्टियां, किसी के लिए पेपर बोट्स, तो किसी के लिए गर्मा गर्म चाय और फैमिली के साथ गुजारा हुआ वक्त। आज का मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है। वॉट इज योर फेवरेट रेनी डे मेमोरी? बारिश के दिनों की आपकी ऐसी एक कौन सी याद है जो जब कभी बारिश आती है तो आपको एकदम से याद आ जाती है? क्या बचपन की कोई मस्ती याद आती है, या फिर कोई स्पेशल मानसून मोमेंट जो आज भी आपको खुश कर देता है? तो फटाक से कॉल कीजिए 0402323 0030, 0402323 4821, 0402329704947 15। जी हाँ, 2970-4715 इन तीन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और 0402323-4822 पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और बताएं मुझे कि बारिश का मौसम जैसे ही आ जाता है तो बारिश के सीजन की कोई एक ऐसी याद है जो आपकी पहले से जुड़ी है आपके पास, और जब कभी भी आप बारिश आती हो तो आपको वो पल याद आ जाता है और आपको खुश कर देता है। तो बस कॉल करें और मेरे साथ अभी चलें इस गाने के साथ। ये गाना है लता जी की आवाज़ में और गाना कहता है लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी, और क्या खूबसूरत सा गाना। इस गाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं एड के साथ।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ని పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

0: जागले। जी हाँ, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो। क्या खूबसूरत से गाना, फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी से। मैं हूँ आपके साथ इस वक्त आपका दोस्त शरत, और शो चल रहा है हेलो रेनबो। और मैंने पूछा है कि आपकी फेवरेट मेमोरी जब बारिश का मौसम आता है तो कोई ऐसी याद आती है, तो हमारे दोस्त हमारे साथ हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: गुड
0: हेलो,
1: आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून सर, कौन बोल रहे हैं सर?
1: नरसिम्हा रेड्डी सर, प्रेमावती पेट, राजेंद्र नगर।
0: हाँ नरसिम्हा रेड्डी जी, बताइए सर, क्या ऐसी याद है जो बारिश का मौसम आते ही याद आ जाता है आपको बचपन
1: बहुत
0: की?
1: बहुत बहुत बहुत याद है सर। और बहुत मजे की चीज आप ये है,
0: अच्छा, क्या है वो बात?
1: बचपन में सर स्कूल में जाते हैं, रिटर्न में जाते ना सर, पानी आया तो कहीं कहीं भी नहीं रुकता था सर। मैं
0: हाँ एग्जैक्टली।
1: पूरा बिक के आता था घर पे, आने के बाद अब देखो तमाशा,
0: क्या हो जाता
1: दे दे वाला मारपीट मारपीट होता था। कितने बार समझाया तो वैसे ही काम करता बोल के। हाँ, तो उसको बचपन की बात थी। और बचपन में क्या, बारिश आते रहे तो उसमें नाव बनाना छोड़ देना और वो करते थे
0: क्या
1: बचपन में।
0: बात है,
1: और
0: क्या।
1: जरा बड़ा होने के बाद, जवान हो गए समझो 17-18 साल 20 तक, पानी में वॉलीबॉल करने का, वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था हमारे को।
0: क्या बात है, क्या बात
1: पानी
0: है,
1: में खेलते थे, और बास्केटबॉल वॉलीबॉल।
0: क्या बात है, क्या बात
1: अब
0: है।
1: इस वक्त पानी का जो मजा लेते हैं, ऐसा ऐसा मजा लेते हैं जैसे पानी में जो है सर, वो पानी गिरते रहते ना सर,
0: हाँ जी,
1: उसमें एक किस्म का म्यूजिक आते रहते सर।
0: आह क्या बात है,
1: म्यूजिक
0: बहुत सुंदर बात है, पानी में भी म्यूजिक ढूंढ लेना।
1: म्यूजिक मजा, म्यूजिक का मजा लेते सर। एक एक अलग अलग म्यूजिक आता, पानी रोड पे जब जाता ना
0: हाँ
1: सर,
0: हाँ
1: उसका म्यूजिक अलग होता,
0: छत
1: स्लो
0: पे,
1: होने
0: छत
1: के
0: पे
1: बाद
0: गिरे तो
1: अलग
0: अलग
1: होता।
0: आता है। हाँ छत पे जो आजू बाजू टीनों पे गिरता है वो भी एक
1: हाँ
0: अपने आप में शेड्स पे गिरता है।
1: वो टीनों पे जो गिरता ना सब, उसका तो पूछे न कब।
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: वो जो बोले गिरते ना,
0: हाँ
1: उस टाइम में भी बहुत मजा। मैं तो बारिश में वो पानी का म्यूजिक जो बहुत मजा लेता हूँ सब।
0: क्या बात है यार, अब मेरे को भी
1: तो
0: मैं भी ऐसे ही
1: सांसे
0: करूंगा,
1: पानी
0: सोचता हूँ बाहर जाके, अभी जैसे बारिश अगर आ रही होगी ना, जैसे मैं बाहर निकलूंगा आज भीगते भीगते जाऊंगा, फिर जो
1: देखो
0: घर पे
1: देखो
0: जाके
1: सर,
0: देखूंगा
1: मैं
0: क्या
1: तो जबरदस्त। और
0: बोलते।
1: क्या, 5-6 बजे के टाइम में पानी आता है तो मैं दुकान में बैठे देखते हुए म्यूजिक मजा लेते हुए गरम गरम पकौड़ी मिर्ची चाय के साथ मजा लेता हूँ सर अभी तो।
0: क्या
1: थैंक
0: बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरसिम्हा रेड्डी जी कॉल करने के लिए,
1: यू सर।
0: थैंक यू। दोस्तों ये थे नरसिम्हा रेड्डी जी जो बताए थे बचपन की बात, जब ये छोटे थे तो स्कूल से, उस दौरान मतलब स्कूल बसेस का इतना ट्रेंड नहीं था, थोड़े बहुत थे पर इतना नहीं था आज के 25-30 साल पहले। ये तो इनकी एज भी आई गेस मोर देन 50+ हैं, तो वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो स्कूल से भीगते भीगते आते थे, कई बार इनके पेरेंट्स इनको समझाते थे, पर जो बारिश का मज़ा है भाई वो अलग ही दुनिया में लेके जाता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी कई बार हुआ है, और मेरे साथ साथ ना जाने कितने के साथ ऐसा हुआ कि बारिश, जब स्कूल से निकलते बारिश आती और छतरी वतरी ऐसे ही उड़ जाती, उल्टी हो जाती छतरी। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? कोई ऐसी एक मेमोरी, जो कोई ऐसी याद है जो आपकी फेवरेट है, और जब भी बारिश आती है तो वो याद सबसे पहले आपको आ जाती है, तो मुझे कॉल करके बताएं 0402323 4821, 0402323 0030, 0402970 4715। इन तीन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0402323 4822। एक हमारे दोस्त हैं जो हमेशा कुछ एंटिक रेडियोज़ और कुछ एंटिक आइटम्स के फोटोज़ वीडियोस हमें भेजते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और इन्होंने आज बांसुरी की फ़ोटो भेजी, और साथ में एक वो आता ना हाथ से बजाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ मुँह ऐसे वाला, वो वाला इन्होंने जो है फ़ोटो भेजा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। आप लोग भी हमें कॉल करें और बताएं कोई ऐसी फेवरेट बारिश वाली याद जो आपके दिल में आज भी घर करी हुई है और आप उसे कभी भी नहीं भूल सकते, आपको हंसी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है चेहरे पर।

0: ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो समझ सके ना हम। वैसे हम समझते हैं कि बारिश का जब मौसम आता है तो पुरानी यादें भी हमारे साथ लेकर आता है और हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है। तो ऐसी ही कुछ यादों के बारे में आज हम जानना चाहते हैं। तो एक दोस्त ने तो बताया कि बचपन के दिन की बात, अभी एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: रमेश उस्मान।
0: अरे रमेश जी, बताइए सर, आपकी कौन सी याद है बचपन की बारिश के मौसम की?
1: नमस्कार भैया, रमेश उस्मानगंज। 1971 में उस्मानगंज के पास, उस्मानगंज तोपखाना पीलखाना सर, बाढ़ आके बहुत दबाव हो गया था सर।
0: ओहो, ओके।
1: तो पूरा हैदराबाद सिंगरौली के पूरा लोग आके पुराने मकान पूरे गिर गए थे, बहुत परेशानी हो गई थी। एक 8 दिन के बाद क्या हो गया बोले तो टैंक बंद, अपना गंडी पेट पुड़ गया, भागो बोलते ऐसा पुकारा निकाले बदमाश ना वहाँ।
0: फेक न्यूज।
1: सेकंड एवर में तो टैंक बंद फुट गया बोलते
0: अच्छा, ओके।
1: दुकान भी बरोबर बंद नहीं करे, सब लोग भागे दुकान ऐसा जल्दी जल्दी से भागे। नमस्कार बोलते था जब बिरला मंदिर के पास, कम से कम 35-40 हजार लोग उसके पास चढ़ के बढ़ गए थे।
0: 35-40 हजार? अरे बाप रे, ओके। आप भी गए थे क्या?

जी हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मैं हूँ श्रेता आपके साथ और शो चल रहा है हेलो रेनबो। नमस्ते हेलो आदाब का ये दूसरा सेगमेंट है और मैं आज जान रहा हूँ आपसे कि बारिश का जब मौसम आता है तो कौन सी ऐसी फेवरेट मेमोरी लेकर आता है जो आपको बहुत पसंद आती है। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहिए?

0: Hey, very hungry? What special today? Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more. More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city. And where do we taste all these? On Jashne Hyderabad.
1: Every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
0: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
2: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो एड कलर्स टू योर लाइफ। मैं हूं श्रेत आपके साथ और मैंने आज सवाल बहुत कमाल का पूछा है कि बारिश का मौसम जब आता है तो आपको क्या सबसे पहले याद आता है। तो कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं जरा उनके दिल की जानते हैं। हेलो, हाँ जी,
4: हाँ जी, मेरा नाम सनम और मैं जो है ना मेरे फ्रेंड्स के साथ दिखना बहुत पसंद है।
3: अरे वाह,
4: हाय हाय, गरम गरम पकोड़े, भजी और चाय के साथ।
3: क्या बात है सनम जी, बहुत ही कमाल की बात है। तो अब बारिश स्टार्ट हो गई तो आपने वो भीगने वाला पार्ट कर लिया है, अभी बाकी है?
4: ऑलरेडी
3: हो गया। चलिए अभी पकोड़ों की बारी है तो एंजॉय कीजिए और इस बारिश में इतनी यादें बनाइए जो आने वाले शब्द आने वाले टाइम में भी जब आपसे कोई पूछे तो इस याद को आप अगली बार बताइएगा। थैंक यू सो मच।
4: अभी कोशिश करो आप डालने की।
3: कौन सा वाला गाना बताइए फटाक से।
4: मौसम मौसम का पानी वो वाला सॉन्ग डालो ना।
3: चलिए मैं ट्राई करता हूँ पक्का। ठीक है,
4: थैंक यू,
3: थैंक यू। दोस्तों ये थी सनम जी जो अपने दिल की बात हमें बता रही थी। अभी एक और कॉलर ले लेते हैं फटाक से क्योंकि वक्त भी होता जा रहा है। ओके, हेलो।
5: हेलो, गुड आफ्टरनून। आदाब शरद जी।
3: आदाब सर, कौन बोल रहे हैं सर?
5: शेर खान बोल रहा हूँ।
3: शेर खान जी बताइए सर, बारिश की जब बात आती है, बारिश का जब मौसम शुरू होता है तो आपको क्या पसंद आता है, सबसे पहले क्या याद आता है?
5: सबसे पहले तो मुझे बारिश बहुत पसंद है।
3: अरे वाह, क्या बात है।
5: सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को भी प्यार भरा सलाम आदाब, दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे।
3: जरूर रखे। जी हाँ जी हाँ।
5: हमारे मुमताज बाजी को सलाम, मोहम्मद अफजल साहब को सलाम। बचपन की बहुत सारी बारिश की यादें हैं शरद भाई, घूमने बैठे तो इतना कम होता लेकिन वो जब दिन याद आ जाते हैं ना बहुत बहुत मजा आता है। ये ऐसा फिर से बचपन में लौट जाता है इंसान। मैदान में खेलने को जाते थे हम तो कभी जम के बारिश के आसार शुरू होते थे तो भागते दौड़ते घरों की तरफ चले जाते थे।
3: फिर भी भीग जाते थे।
5: हाँ भीग जाते, कभी कभी मौका मिल जाता था पहुंचने का, पहुंचते के साथ ही झमाझम शुरू हो जाती थी और कभी कभी रास्ते में ही पूरा भिगा लेती थी।
3: जी हाँ।
5: कभी पैदल दौड़ते थे, कभी साइकिल पे रहते थे, कहीं बाहर गए हुए दोस्तों के साथ भाइयों के साथ तो वहाँ भी भीग जाते थे, कभी गाड़ियों पे। बहुत सारे सीन ऐसे इतने याद आते हैं। गाड़ियों पे भी हम गए गाँव में तो ऐसा हुआ कि जम के बारिश शुरू हो गई और मौसम की जानकारी थी कि बारिश खुलने वाली नहीं है तो वैसी वैसी भारी बारिश में भी भीगते हुए घर पे जाना पड़ा कई बार।
3: मगर वो मजा भी अलग होता है शेर खान भाई।
5: बहुत मजा आता, बहुत मजा। ऐसी जबरदस्त बारिश में भीगते भी गए लेकिन एक याद ये भी है कि हम किराए के मकान में रहते थे जब मट्टी के जो मकान हुआ करते थे।
3: जी हाँ, कच्चे घर। हाँ।
5: तो उसमें रहते थे और बारिश इतनी थी, झड़ी लगी हुई थी, दो तीन दिन की, तीन चार दिन की बारिश लग गई थी और सामने नदी भी थी और पुल था वो नदी का।
3: ओके।
5: वो नदी अपने उफान पे आ गई थी, इतनी बारिश चल रही थी। और एक दिन हो गया, दो दिन हो गया और जो मट्टी का मकान था किराए का तो उसकी एक एक दीवार टूटने गिरने लग गई रोज रोज रोज रोज और बारिश शुरू थी उसमें। अब हम इस पे टेंशन में हो गए कि अब तो इधर की दीवार गिर गई, इधर की गिर गई, अब थोड़ा सा बचा है, पता नहीं इसमें भी क्या होगा। और बारिश तो बहुत चल रही थी दबा के, तो फिर जितना छत बचा था, जितना साया बचा था तो दुआएं करते गए थे। वो बाद में बारिश खुल जाने के वजह से उतना बच गया और हमको बहुत बड़े नुकसान से
3: बचे आप। जी हाँ, ऊपर वाला हमेशा सुनता है शेर खान भाई, जब कभी आप दिल से दुआ करते हैं ना तो सब कुछ वो सुनाई देता है उनको भी।
5: बिल्कुल
3: बहुत बहुत शुक्रिया शेर खान भाई कॉल करने के लिए और इतनी प्यारी बात हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे हमारे दोस्त शेर खान जो बता रहे थे कि बचपन के दिनों में खूब एंजॉय करते, खेलने जाते तो भीग जाते तो फिर बचने की कोशिश करते। फिर एक किस्सा भी बताया जब कच्चे घर में ये रहते थे और बारिश बहुत ज़्यादा थी, घर थोड़ा टूट भी रहा था, ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे, फिर बारिश रुकी और वापस सब कुछ ठीक हुआ। तो ये सब जिंदगी का एक पार्ट है। और सोचिए इतनी गर्मी थी इतने महीनों से और इतनी गर्मी के बाद में जब हम वापस

0: गर्मी के इस तरफ आए, मतलब गर्मी से हम निजात पाने के लिए हर दिन प्रार्थना ही करते हैं, क्योंकि जब भी जैसे ही गर्मी गर्मी से बाहर निकलते ऑफिस पहुंचते तो ये भगवान यार एक गर्मी कम कर दो, ऊपर वाले से प्रार्थना करते ही रह रहे थे करते ही रहते। उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए बारिश का मौसम शुरू किया जाए, और शुरू हो चुका है हमारे शहर में बारिश का मौसम, और मानसून बहुत ही कमाल का आया है, और रिमझिम रिमझिम बारिश, तेज़ बारिश, अब हर तरह की बारिश का लुत्फ़ हम उठाने वाले हैं आने वाले कुछ महीने, और बहुत सब कुछ कमाल का होने वाला है। अभी चलते हैं एक ऐड के साथ, और जब वापस आते हैं तो करते हैं थोड़ी और बातें आपके साथ, आपके अपने आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 पर।
1: కోసం ఎటువంటి సామాన్లు కొనేటప్పుడైనా ముందుగా బిఏఎస్ క్వాలిటీ మార్క్ అంటే ఐఎస్ఐ మార్క్ ను తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోండి. ఆ చిహ్నం ఉందంటే అంతా బాగున్నట్టే.
2: ఆ చిహ్నం లేకపోతేనో?
1: ఒకవేళ మార్క్ లేదంటే ఆ ఉత్పత్తి మీకు సురక్షితం కాదని అర్థం చేసుకోండి. భారత ప్రభుత్వం 750కి పైగా ఉత్పత్తులపైన బిఏఎస్ మార్క్ ను తప్పనిసరి చేసింది. ఈ రోజే బిఏఎస్ యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
3: సోదరా, భద్రత విషయంలో కామెడీ చేయకండి.
2: బిఐఎస్ నమ్మకానికి నాణ్యతకు స్ఫూర్తి.
4: జారీ చేయవారు బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ హైదరాబాద్.
5: FM రెయిన్బో 101.9.
0: दोस्तों घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो चला 1:55 और 40 सेकंड के आसपास घड़ी इस वक्त चल रही है, और हमें ये कह रही है कि यहाँ से ले लो रुख्सत। मैं इसी वादे के साथ यहाँ से जाता हूँ कि फिर होगी मुलाकात आपसे फिर किसी दिन फिर किसी हफ्ते आपके अपने आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 पर। रेनबो के साथ लाइव रंगीन, बाकी शोज का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगला कार्यक्रम भी एकदम तैयार है, अगली होस्ट भी एकदम तैयार है आप सभी को एंटरटेन करने के लिए कुछ बेहतरीन से गानों के साथ, कुछ कमाल कमाल की बातों के साथ। तो सुनते रहें आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9, रेनबो एट कलर्स टू योर लाइफ। मैं आपका दोस्त श्रेत यहाँ से लेता हूँ रुखसत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सायोनारा। अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अपनों का ख्याल रखने में जो मज़ा है वो मज़ा और कहाँ है। यकीन मानिए दिल को बहुत बहुत सुकून मिलता है जब हम अपनों का ख्याल रखते हैं। जैसा बारिश में भीग कर सुकून मिलता ना, ठीक वैसा ही।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM रेमो पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 और 15 सेकंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है अर्थप्रोग्राम नए रंग का। सामाइन की खिदमत में सनालमास बावजीर का पुरखलूस आदाब। पेश है अर्थप्रोग्राम नए रंग।

हिंदी फिल्मी गीतों के सफर में आप जानेंगे माहौलियात के मुतालिक चंद अहम बातें। नैरंग बज्म के इख्तिताम पर आप सुनेंगे पयाम-ए-शब, जिसको पेश करेंगे नदीम अख्तर ज़ेदी।

0: तो आइए दोस्तों, बज्म का आगाज करते हैं हरफे ताबिंदा से।
1: सामईन इकराम, जिस तरह चेहरों की भीड़ में हर चेहरे की अपनी इनफरादियत होती है, हर आवाज की बाजीगर्स जुदा होती है, वैसे ही हर इंसान का मिजाज भी अपनी अलग पहचान रखता है। बाज़ लोग नर्म हवा की तरह मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो दिल की उलझने सुलझने लगती हैं, और कुछ लोग तेज़ आंधी की तरह होते हैं जिनकी मौजूदगी में

हाँ भाई, मौसम तो बड़ा ही औसम है जहाँ पर हर पल समा बांध रहा है। और बात हो ही रही है बाहर की, तो भाई फूल क्यों पीछे रहे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत जो फ़ज़ाओं में आपके हसीन एहसास को बिखेर देगा और हाँ, आपके इंतज़ार के फूलों को यकीनन खिला देगा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM रेनबो पर, और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। और गीतों के सफर में आज हम बात करेंगे माहौलियात की। सुरीले गीतों का सफर शुरू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, और वक्फे के उस पार हम बातें करेंगे माहौलियात की।

हाँ जी बिल्कुल। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं मनचले नटखट गीत लेकर। जैसा कि भाई हमने आपसे अंतराल से पहले वादा किया था कि आज हम बात करेंगे माहौलियात की। हाँ जी बिल्कुल, माहौलियात को कुदरती तवाजुन से ताबीर किया जा सकता है। इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करते हुए फितरत से फ़ायदा उठाता है, लिहाजा इसको फितरत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए ताकि वो तसलसल मुहैया कर सके। हम मिसाल के तौर पर पानी दे सकते हैं क्योंकि पानी ज़िंदगी के बुनियादी वसाइल में से एक है। वसाइल को ज़ाय करने, फजला ज़ाय करने और साफ़ पानी के वसाइल का इस्तेमाल जैसे मनफी अवामिल, ऐसे अवामिल शामिल हैं। आगे भी हम इस पे मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत अभिजीत की आवाज़ में।

0: FM Rainbow 101.9
1: आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं बुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं माहौलियात की। जी हाँ दोस्तों, अगर एक माहौलियाती दुनिया की अहमियत पर हम बात करें तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि माहौलियाती तवाज़ुन पर तवज्जो ना देने से कुदरती आफात नागजीर हो जाते हैं। बिल्कुल, इस सिलसिले में माहौलियात की अहमियत को समझा जाता है। इसके नतीजे में ज़िंदगी के बहुत से मनफी मंजरनामे जैसे कि भूख और पानी की जंगें जन्म लेती हैं। इन तबाहकुन मंजरनामों की रोकथाम के लिए ह्यूमन इंसान फितरत की हिफाजत करने वाली टेक्नोलॉजी, जी हाँ फितरत की हिफाजत करने वाली टेक्नोलॉजी तैयार करने की कोशिश कर रहा है, और हालिया बरसों में वो काबिल तजदीद तवनाई के ज़रिए जैसे कि कहा जा सकता है कि फितरत से दोस्ताना सरगर्मियों की तरफ रागिब हो गए हैं। साइंसी दुनिया की तरफ से तस्वीर की गई माहौलियाती आफात में कुछ मौजूआत हैं, वो क्या मौजूआत हैं हम जानेंगे इस गीत के बाद।

जी हाँ, साइंसी दुनिया की तरफ से तसव्वुर की गई माहौलियाती आफात में कुछ मौजूआत हैं। वो क्या मौजूआत हैं हम आपको बताते चले कि ओकियानूस में पानी की सतह यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहाँ गैर काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए एक अहम अंसर है, वहाँ खम्बों पर ग्लेशियर पिघलने के नतीजे में समंदरी पानी की सतह में इजाफा होता है। ये अंसर कुदरती रिहायश गाहों खुसूसी स्पेशली समंदरों के रिहायशी गाँवों में बहुत सी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब जैसा कि आबो हवा में तब्दीली यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा सबब है, मौसमियाती तब्दीलियाँ, हाँ जी बिल्कुल हो सकती हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ लाएगी जो पूरी इंसानियत पर मनफी असर डालेगी। आगे भी हम माहौलियात के मुतालिक मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में फिल्म खलनायक से लिया गया बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: FM Rainbow 101.9
1: आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं माहौलियात की। जी हाँ दोस्तों, पानी की जंगे। अगरचे दुनिया का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन पीने के पानी के वसाइल की कमी है। इन ज़राए को आलूदा करने और इनका इस्तेमाल करने का एक सबसे अहम नतीजा ये है कि अगर वो कभी ख़त्म नहीं होंगे तो ये दौर अंदेशी है कि साफ पानी के वसाइल की कमी मुस्तकबिल करीब में जंगों का सबब बनेगी। माहौलियात की अहमियत को बेहतर तौर पर समझने के लिए माहौलियाती तवाज़ुन के मुमकिना असरात की तहकीकात करने की सिफारिश की जाती है। कुछ जिंदा प्रजातियों के मुअद्दम होने का खतरा फितरत के नाकाबिल वापसी मनफी असरात में से एक है। माहौलियाती तवाज़ुन में खलल डालने वाले अहम अवामिल बहुत से अवामिल हैं जो माहौलियात की अहमियत पर मनफी असर डालते हैं, मरतकब कर सकते हैं। ताहम अहमियत के लिहाज से कुछ अवामिल नुमाया हैं और आगे हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सनाल माज बावजीर के संग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं बुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं माहौलियात की। जी हाँ दोस्तों, आबी वसाइल के इस्तेमाल और आलूदगी पर ना काफ़ी तवज्जो दी जाती है, जैसे कि गैर मनसूबा बंद मनसूख शुदा तामीराती दुश्वारी, जंगलाती इलाकों की तश्कील और जंगलात को ज़ुबाह करना। हम माहौलियात के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि हम माहौलियात के तहफ़ के लिए क्या कर सकते हैं, ये आप तमाम के जहनों में सवाल मुंसलिक हो रहा होगा कि भाई हम अपने माहौल की हिफाजत के लिए आखिर कर क्या सकते हैं, किस तरह से जो है ना हम अपने माहौल को सेफ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। ये आपके जहनों में सवाल उमट रहा होगा। चलिए जानते हैं कि आप अपने माहौल को किस तरह से बचा सकते हैं। जब इनफरादी पैमाने पर गौर किया जाए तो ये महदूद हो सकता है कि लोग फितरत का तहफ्फुज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इकदामात किए जा सकते हैं जो बड़े पैमाने पर इख्तलाफात पैदा कर सकते हैं। इन इकदामात में से कुछ हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद।

हाँ जी बिल्कुल, ज्यादातर फजला को रिसाइकल और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कचरे को ग्लास, प्लास्टिक या धात और बैटरी के फजले में अलग करना होगा। जाये होने से पहले अलग होने वाला फजले को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और मनफी असरात पैदा करने की शराओं को काफी हद तक, जी हाँ, काफी हद तक कम किया जा सकता है। फजला को जाये करने पर गौर किया जाना चाहिए। सनती इलाके में माहौल में जारी गैसों पर काबू पाना जरूरी है, क्योंकि बेकाबू गैस हवा की आलूदगी दोनों को खारिज करती है और माहौलियाती आफात के लिए सुटेबल मौजू माहौल को तैयार करती है। गैर मनसूबाबंद तामीर एक सबसे अहम असर है, क्योंकि इसकी तामीर इसके साथ माहौलियाती बहुत से मसाइल लाहक है। साफ पानी के जराए की आलूदगी इन मनफी असरात में से एक है। काबिले तजदीद तवनाई जराए के इस्तेमाल की शरह को ज्यादा से ज्यादा किया जाए। काबिले तजदीद तवनाई जाए का मतलब फितरी वसाइल का जाए इस्तेमाल है। एक तरफ तवनाई हासिल करते हुए दूसरी तरफ तजुर्बा किए जाने वाले आलूदगी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए तवनाई खर्च की जाती है। आगे भी इस पर हम मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत, जिसको आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। फिल्म द दाग द फेयर से लिया गया ये गीत।

हाँ जी बिल्कुल, माहौलियात की अहमियत के बारे में जिन अहम तरीन उमूर का जिक्र किया जाए, जैसे कि इनमें से एक जंगल के इलाकों का नाकाफी तहफ्फुज़ है। जंगलात को दुनिया के फेफड़ों के तौर पर बयान किया जा सकता है। आलूदगी वाली हवा को फिल्टर किया जा सकता है।

आलूदगी वाली हवा को फिल्टर करके और ऑक्सीजन तैयार करके जंगलात एक बहुत अहम काम अंजाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे माहौलियात की। आइए इसी के साथ सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म इश्क से लिया गया ये गीत।

0: FM Rainbow 101.9
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो पर और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

और हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त वक्त हुआ जाता है 10:40 और 12 सेकेंड्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल बारिशें हो रही है, मौसम इंतहाई खुशगवार हो रहा है, और हम वहीं ये भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि अरे यार इतनी बारिश क्यों हो रही है, हमारे ज़रूरी काम मुतासर हो रहे हैं, या फिर स्कूल के बच्चे शिकायतें करते हैं कि नहीं मम्मी इतनी बारिश में हमें स्कूल नहीं जाना, ये बारिश होती ही क्यों है, फलाना इमका डिमका। तो हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि बारिश की अहमियत क्या है, बारिश क्यों होती है। भाई बारिश तो कुदरत का अनमोल तोहफा है और ज़मीन पर जिंदगी की बका का जामिन है। हाँ जी बिल्कुल, ये खुश्क साली का खात्मा करके पौधों को सैराब करती है, सरजमीन पानी की सतह बढ़ाती है और ज़राअत की तरक्की के ज़रिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाती है।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और तो प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी नाकाबिले फरामोश गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं बारिश की। हाँ, ज़रात और खुराक की पैदावार, अगर इस लिहाज से हम बात करें तो बारिश ज़रात की रीढ़ की हड्डी है। फसलों की आबो हवा का इन्हिसार अक्सर कुदरती बारिशों पर होता है। बारिश न सिर्फ होने वाली सूरत में कहत का खतरा पैदा हो जाता है, आबो हवा में तब्दीली, अगर इस लिहाज से हम बात करें तो शदीद गर्मी और जिसके बाद बारिश का मौसम माहौल को खुशगवार और तरोताज़ा बना देता है। ये गर्द व गुबार और आलूदगी को साफ करने में अहम किरदार अदा करती है। हम बारिश की अहमियत पर मज़ीद बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम बात कर रहे हैं बारिश की। जी हाँ, जंगलात और जंगली हया की बका का दारोमदार बारिश पर है। जानवरों और परिंदों के लिए पानी और खुराक का कुदरती निज़ाम इसी से चलता है। मुख्तसर अंदाज में अगर हम कहें तो बारिश के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। अगरचे शदीद बारिश या सैलाब नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर बारिश कायनात के निज़ाम हयात को रवां दवां नागजीर है।

जी हाँ दोस्तों, सुरीले गीतों का सफ़र होता है यहीं पर अब ख़त्म। आइए अब सुनते हैं पयाम शब। तहरीर और पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर जेदी की।

ये और बात तेरी गली में ना आए हम, लेकिन ये क्या कि शहर तेरा छोड़ जाए हम। खुददारी, एतेदाल और ताल्लुकात में तवाजुन ज़रूरी है। इंसान को चाहिए कि अगर किसी ताल्लुक में तल्खी या दूरी आ जाए तो सब्र और वक़ार के साथ इसे कबूल करे, लेकिन अपनी दुनिया और अपने फ़राइज़ और अपने दूसरे ताल्लुकात को मुतासिर न होने दे। अक्लमंदी ये है कि एक दरवाज़ा बंद होने पर पूरी ज़िंदगी को अंधेरा ना समझा जाए। किसी एक नाकामी, इख्तलाफ या जुदाई की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर ना होने दो। खुददारी के साथ आगे बढ़ो और ज़िंदगी के दूसरे मौके पर और ज़िंदगी के दूसरे मौके और नेमतों की कद्र करो। दानिशमंद वो है जो ताल्लुकात में वक़ार भी बरकरार रखे और ज़िंदगी से उम्मीद भी ना छोड़े। एक शख्स की दूरी का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया से रिश्ता

0: तोड़ लिया जाए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग इख्तिताम को पहुंचता है। इस वादे के साथ दोबारा जल्द होगी आपसे मुलाकात इनिमीटर्स पर। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर को दीजिए इजाजत।
2: किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। ब्रहन मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: अब केवल 7 रन चाहिए, एक छक्का चाहिए बराबरी के लिए और इनिंग्स के तुरंत बाद आप प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम स्टूडियो से सुन सकेंगे, उसमें बची हुई जानकारी आपको मिलेगी। अगली गेंद को फिर उठाकर खेला, फील्डर के पास जाते ही

0: उन्होंने इनकरेजिंग वर्ड्स बोले हैं।
1: जो उसकी बॉडी होती है, हल होता है। दूसरा होता है उसका मूवमेंट, यानी शिप को आपने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना,
2: जी
1: उसके लिए आपको इंजन चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, इत्यादि जो भी इक्विपमेंट चाहिए। और तीसरा होता है लड़ना, कि आपने मिसाइल डालने हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर कैपेबिलिटी क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी क्या है। तो वो सबसे मुख्य पार्ट है,
2: जी
1: क्योंकि फाइनली ये सारे वॉरशिप हैं और इनका मेन काम है लड़ना।
2: लड़ना जी।
1: लेकिन इन सब में आज की डेट में जो हमारा फ्लोट में हमने करीब 90% इंडिजनाइजेशन हो गया है, और फाइट में हमारी थोड़ी कैपेबिलिटी अभी

0: पे काम करना अभी बाकी है।
1: चोल साम्राज्य के समय से हम अपनी नौसेना पर गर्व करते आ रहे हैं, हमारे जल सीमाओं के प्रहरी और अब अलग अलग हिस्से हम उसके बारे में सुनते रहे थे। INS विक्रांत पर तो पूरे देश को गर्व है ही। आपने बताया कि किस प्रकार से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई और लगातार बेहतर होता जा रहा है, तो संजय मेस्टन सर एक बार फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने क्योंकि सर्विस में रहते हुए बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, वहां के कार्य प्रणाली को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, आप ये बताएं कि जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे ब्लूप्रिंट्स हैं या जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं वो हम ही तक रहे, हमें साझा ना करने पड़े किसी के साथ, और जब वो सिर्फ हम तक रहेंगे तो हम उसमें तेजी से बदलाव कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है उसे हम छिपा कर भी रख सकते हैं, क्या एक पहलू ये भी है इसका?
2: बिल्कुल नीलम, एक पहलू वो भी है। देखिए, पहली बात ये, एक जो भी स्वदेशीकरण है ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। देखिए, इकोसिस्टम में बहुत कुछ चाहिए होता है, किसी भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट को बनाना हो, चाहे जहाज को बनाना पड़े, चाहे मिसाइल को बनाना पड़े, चाहे ड्रोन को बनाना पड़े, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक बैटरी चाहिए, पावर, फिर चाहिए आपको, सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में चाहिए है वो है आपको चाहिए हैं ये सेमीकंडक्टर्स, वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, जो चिप्स होते हैं। और ये एक खुद बहुत बड़ा, इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है। आज कोई भी देश विश्व में ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है कि पूरा एक सेमीकंडक्टर चिप वहां पर बन जाए। उदाहरण के तौर पे जो डिजाइनिंग होती है, ये जो चिप डिजाइन, ये स्टार्ट कहाँ होते हैं? अमेरिका में। मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? ताइवान में। उसके पास जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं साउथ कोरिया में। जो चिप की काटना पड़ता है, जो लिथोग्राफी मशीन होती है, वो कहाँ से आता है? नीदरलैंड से। तो ये आप देखिए कितनी इको डिपेंडेंट सिस्टम है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जो एंथ्रोपिक है, ये जो अभी AI का सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उसमें फेबल 5 और माइथो 5 वो किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके 5-6 देश हैं। तो कुछ जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हर कंट्री अपने देश में रखता है और वो हर देश को अधिकार है, और लेकिन कुछ चीजें जो ओपन डोमेन में है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पहले ही बात होती थी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनको अभी मिक्स करके 7 DPS यूज कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज आई है कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल कर दिया है
1: जी।
2: और इस डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो फिगर आई है 1.78 लाख करोड़ की इस साल, उसमें 24% है प्राइवेट इंडस्ट्री का
1: जी। PPP की हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
2: तो आप देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री, आप याद करिए अमेरिका जैसे है, वहाँ GE है या जितने भी इनके टॉप कंपनीज हैं सिलिकॉन वाली, वो सब मतलब प्राइवेट प्लेयर्स थे, गवर्नमेंट के तो वहाँ किसी का नाम ही नहीं पता थे। आज इंडिया में भी यही हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक हैदराबाद में कंपनी है, उन्होंने नाग शस्त्र 150 ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। वो उसकी स्पीड मैक्सिमम है 3 to 3 km/h। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाग शस्त्र हमने जो ड्रोन बनाया 150, ये इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और हाँ, दूसरा जो एक और अच्छा सवाल आपने उठाया था और इन्होंने भी बोला था, देखिए जहां तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सवाल है
1: जी,
2: वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो हम दे सकते हैं। लेकिन हर चीज को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे
1: जी।
2: और आपको पता होगा कि जो इस साल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं, वो है मतलब अगर मैं करोड़ में बोलूं तो 38423 करोड़, और ये एक टाइम पे 2000 करोड़ होता था, दैट मीन्स आज से एक डिकेड पहले, तो 19 times गुना बढ़ गया है
1: जी।
2: आपको अभी पता है AI की अब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि AI तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में आ जाती है, उसमें क्या है कि एक हमारी खुद की ऑटोनोमी होनी चाहिए, मतलब टोटल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें हम सॉवरन AI होना चाहिए, मतलब जो हमारे सर्वर्स, जो हमारे डाटा सेंटर्स, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ वो सॉवरन होना चाहिए। और उस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी अच्छी चीजें की हैं। देखिए, मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया है, आज हमने माइक्रोन जो सिलिकॉन वैली से है, $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात में, और ये सारी जो आपके चिप्स वो है उसमें जो उसकी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग यहाँ पर होगी, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मैं बोलूंगा क्लीन फैक्ट्री होगी, और सबसे ज्यादा आई थिंक वो 5000 स्क्वायर फीट का वो इलाका।

0: है, इतना वो बड़ा है।
1: यानी जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, एमएसएमई भी है, साथ ही एफडीआई भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने, जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, हमारे नर्सेज थी या और भी इस तरह के हमारे सिटीजन्स थे, उनकी भी मदद की, और हमारे बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी अलग अलग देशों से निकाला। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करें, तो एक आत्मनिर्भर देश एक मजबूत देश भी होता है, आप क्या समझते हैं इस नजरिए से, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है नीलम जी आपने, इसमें बड़ी सारी चीजें आती हैं।
1: सब
2: एक बात आपने मेंशन की, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, यानी कि जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो भारत ने उस समय बहुत जल्दी से उनकी मदद के लिए जहाजों में रिसोर्सेज और रसायन भेजे थे। आपको याद होगा तुर्की में हुआ था, तब भी हमने भेजे। आपको याद होगा भी वेनेजुएला में जो हुआ इतना बड़ा, उसमें भी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 70 टन का करीब जो है रसायन को लेके गए थे इमीडिएट एड देने के लिए। अभी वहां भूकंप के झटके चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जहाज लैंड कर रहे हैं, हमारे देश के रसायनों को वहां ले जाके उनकी मदद करे दे रहे हैं जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं देश का अपना स्टेटस जो होता है वो तभी उभरता है अगर आत्मनिर्भरता हो, तभी उभरता है अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी नेवी और एयरफोर्स हो, तभी उभरता है जब हमने 74% एफडीआई बना दिया आज डिफेंस के अंदर, जो आप बात मेंशन कर रहे थे, उससे ये हो गया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको जैसे अब हम कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि साफरान के साथ जो इंजन का हम बना रहे हैं 120 से 140 किलोटन न्यूटन। देखिए सबसे मुश्किल चीज जो है दुनिया के अंदर एरो इंजन बनाना है, वो बहुत कम देश है दुनिया के जो बना सकते हैं। हमारा भी कावेरी इंजन अब बना है जिसको हम अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जैसे घाटक है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो एक एरो इंजन फाइटर जहाज में खासकर 5th generation या 6th generation जहाज में इस्तेमाल होना है, वो जो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, जापान में हो रही है और फ्रांस में हो रही है, वो मिलके भारत बनाएंगे, तो इसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सोर्स कोड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बना हम मिल करके रहे हैं, को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे हमने ब्राह्मोस को डेवलप किया, को डेवलप किया। और एक और चीज आ जाती है, जब हम एक साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के रीजन की हम जब बात करते हैं, तो भारत को एक बहुत बड़ा देश का तरफ देखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट जो भारत का है वो सभी को मालूम है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो, या फिर जो बलूचिस्तान में है वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और कुछ नहीं है, वो फॉरेन नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इमेज है एज अ स्टेबलाइजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये, तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत हिंदुइज्म जब वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स आर्मी और नेवी मजबूत रहती है, और हम सहायता यमन में आपने देखा सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को। अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई
1: जी।
2: ये है 2005 की, कांगो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबलाइजेशन मिशन चल रहा था, वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं इस समय, सबसे ज्यादा 5,600 जो है बांग्लादेश से हैं, 5,200 से 500 भारत के हैं और 2,600 के करीब हैं पाकिस्तान के। उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया, उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कांगो के अंदर। तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको, उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर, वो बेचारे फंस के, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। और भारत के जो Mi-25/35 अटैक हेलीकॉप्टर है वो गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा, फिर हमारे MI-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअली इवैक्यूएट

0: या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके आए ताकि उनको बचा सके। ये है भारत, हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है। मदद में जब भी कोई पुकार करता है सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे होते हैं, भारतीय सेना वहां पे कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे हो।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने बताई और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे। और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर विक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम दो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी, देखिए हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी जैसे आपने बताया, और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके। क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के एमएसएमई सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, अगर आप वेस्ट में देखें महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा, तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहां पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे डीपीएसयूज में, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफकोर्स हमारा पीएसयू शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में। तो चार डीपीएसयू है, एक पीएसयू है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो एक MIV दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहां पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है, 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम टॉप 10 नेशंस में आ जाएं। तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के, कि हम टॉप 5 नेशंस में आ जाएं। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं, जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे ब्राउन फील्ड हो ग्रीन फील्ड हो, उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयरमार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है। किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था वो बेसिकली पहले US मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट अब देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया और कहां वो पहुंच गया। सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग वॉरशिप्स बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमारे जो मर्चेंट मरीनर्स थे जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे, महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशंस में उन्होंने शिप्स को लेके जाते इतनी हाई सीज रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है, आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड। तो इसको अब हमने बोला था टॉप 5 और टॉप 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े
1: जी
2: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं, ये इसी की तरफ हैं कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने

0: के लिए इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने मिलियन टन्स जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया
1: जी
0: 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं नीलम जी, मैं ये लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है। सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए, क्योंकि उसका
1: जी
0: आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो OEMs हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहां आके बनाइए
1: जी
0: मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उससे जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका फायदा हमें हो सकता है।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है, वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा? हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
2: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है,
1: जी
2: हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में,
1: जी
2: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहाँ बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच बढ़ गई है,
1: जी
2: जो उसके भी कई कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है।
1: जी
2: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है, और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया, वो एक
1: जी
2: मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में IMEC कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे, और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इसराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक से, अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है, और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। पर मैं तो बोलूंगा, जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया, अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एडुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारतीय हूं। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड्स देखिए, फर्क पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया हमने, तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है,
1: जी।
2: और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी MSMEs आ चुकी है, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ, AI एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे? और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे AI हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजन हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं, तो जहां पर जॉब्स हैं और जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहां सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को, जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना, बाहर जाते थे, अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
1: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही है, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है और

0: जैसा कि हमें बताया डॉक्टर अश्विंदर ने कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं। जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों मानी जाती है वो?
1: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर वन है।
0: जी
1: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफिशियली गया था ऑन ड्यूटी।
0: जी
1: टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इजराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था जो चाइना में फर्स्ट SCO पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की,
0: जी
1: काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड्स वगैरह देने में, रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है। और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक, से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन। पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें। और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहां 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ आते थे हर कंट्री के साथ। तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की
0: जी
1: बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल रहा हूँ, रेजिमेंटेशन, जितने फॉरेन चीफ आते थे इंडिया में वो बताऊं क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है
0: जी।
1: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूँ तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाएंगे। मैं वैसे महा रेजिमेंट का हूँ, तो महा रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान है उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा
0: जी।
1: तो ये रेजिमेंटेशन है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं
0: जी।
1: तो ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने किए हैं चीन के साथ भी, SCO के साथ एक्सरसाइज। तो मैं घमंड के साथ बोल सकता हूँ, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है, एज अ फौजी वी आर नंबर वन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस, नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेस, इंक्लूडिंग नेवी, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। नेवी के साथ जो वाइजैक में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एक्सरसाइज को,
0: उसमें रिव्यू,
1: उसमें ईरानियन शिप भी थी और यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी थी।
0: ऐसे में बताएं, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है, तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है, और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स है, और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी
0: जी,
1: ये बहुत कोरिलेटेड है। और चीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई में के पंगे नहीं फंसेंगे, हम मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। आज भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है। कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमने बाहर से खरीदना है, उसको हम इंडिजिनाइज भी कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर अश्विंदर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो SDF अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे, कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है

0: हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: देखिए, डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना। अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं। अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजन की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी है, आपको ये भी मालूम होगा कि 6th जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर

0: जी
1: आपको ये भी मालूम होगा कि सिक्स जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, और
0: जी
1: अगर शिप्स में देखें वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसमें भी और जो इंजन है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो। अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश, कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर -20 -30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर। तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके। और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सर्वाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे, चाहे वो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका ज्योग्राफिकल जो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए, हमने कई बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन लीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए, आज नहीं तो वो खुद अपने आप, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को, इसका मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं अगर आप परमिट करें, एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 Sons of National Defense, जैसे बीजिंग की यूनिवर्सिटी या बीजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बीजिंग के अंदर कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें। तो ये चीज हमने शुरू कर दी है। अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है, और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा।
0: जी, यही कामना सभी की। और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगी।
2: बिल्कुल सही, अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है। ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए
0: जी।
2: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं। जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं
0: जी।
2: फ्रांस बोल रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना
0: जी।
2: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर में हम नंबर वन है, चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें
0: जी,
2: और एआई में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं, बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है, और इसके ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरियन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन हो, ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्म

0: निर्भर हैं, क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में। चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है, तो प्लस वन, तो
1: जी
0: प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर, तो उससे क्या फायदा होगा? विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
1: फॉर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा, तो ये है भारत समुद्र से आकाश तक सुरक्षित भी आत्मनिर्भर भी, और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियां, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार कुछ इस तरह मना लेता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की, और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारतीय थल सेना से आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल, वायुसेना से आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई। कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है। और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे।

0: जाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग अभियानों में कोडीन आधारित एक कफ सिरप की 1,00,000 से अधिक शीशियां जब्त की हैं। DRI ने अगरतला में रेलवे सुरक्षा बल और असम राइफल्स की सहायता से अभियान चलाकर 55,000 से अधिक शीशियों की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अन्य अभियान में अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी स्थित एक गोदाम की तलाशी में कोडीन आधारित कफ सिरप की 56,000 से अधिक शीशियां बरामद की। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह पोत यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और सेल फोर्थ 250 समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। हडसन नदी पर आयोजित परेड ऑफ सेल के दौरान 3 मस्तूलों वाले इस प्रतिष्ठित पोत ने गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया। INS सुदर्शनी की यह यात्रा 10 महीने के ट्रांसोनिक अभियान लोकायन 2026 का हिस्सा है। यह समुद्री सहयोग को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का निर्माण करने और सहयोगी नौसेनाओं के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places.

साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने प्रोग्राम यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं सदाबहार आवाज़ के साथ, यानी लता जी की आवाज़ के साथ।

ये फिल्म अपने दौर की बेहद सफल फिल्म रही थी और इस फिल्म के लिए हेमंत कुबा साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे साल 1954 की सुपरहिट फिल्म नागिन से ये सदाबहार गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, और इस खूबसूरत गाने को बेहतरीन संगीत से सजाया था हेमंत कुमार ने, और लाजवाब बोल लिखे थे गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने, और मुख्य भूमिका इस फिल्म में निभाई थी वैजयंती माला और प्रदीप कुमार।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम पेइंग गेस्ट, और संगीत था एस जी बर्मन साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1957 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था सुबोध मुखर्जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद नूतन और शुभा खोटे ने।

बर्मन द्वारा तैयार संगीत को दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। इस फिल्म के गाने लोगों द्वारा काफ़ी सराहे गए। और अब अगला गीत अब तक पहुंच रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में।

अगर दिलरुबा इतनी खूबसूरत है तो बार बार देखना तो बनता है। अब रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम था चाइना टाउन और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब और संगीत था रवि का। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म आई थी 1962 में और ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण किया था शक्ति सामंता ने और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी रंजन बोस ने। और ये एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर साहब ने दोहरी भूमिका निभाई थी। मुख्य भूमिका में अभिनेत्री थी शकीला और हेलेन सहायक भूमिका में थी। और अब अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में, फिल्म तुमसा नहीं देखा। संगीत है उपिन अय्यर साहब का।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:41 और 12 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने, एक ऐसा प्रोग्राम जो इतिहास से, स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है। और अब जब आवाज़ देता है तो जाना तो पड़ेगा ही। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में आप ही के लिए।

आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत, और फिल्म का नाम था मेरा साया। गीतकार थे राजा मेहदी अली खान और संगीत था मदन मोहन साहब का। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1966 में, और इस फिल्म का निर्देशन किया था राज खोसला ने। फिल्म का संगीत मदन मोहन साहब का था और सभी गीत राजा मेहदी अली खान ने लिखे थे। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे सुनील दत्त और साधना। अगला गीत सुनते हैं रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में, फिल्म मदर इंडिया से, मदर इंडिया नहीं, नया दौर से।

रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म का नाम नया दौर। गीतकार थे साहिर साहब और संगीत था ओपिनी।

ईयर का। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था बी आर चोपड़ा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। और ये फिल्म 1957 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी। अगला गीत फिर से रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

रंगून जितना दूर तो नहीं, बस 10 मिनट की इजाज़त चाहिए। गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट
0: टू इंडोनेशिया। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने

कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में कल डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। कल रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज नुवान पहलगाम बेस कैंप का दौरा किया। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के निर्धारित 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। फोएबे लिचफील्ड ने 48 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सच कहूं, सच कहूं तो इतना सफर करते हुए थकने के बाद यदि फिर भी अंत में मुझे कहीं पहुंचना है तो केवल तुम तक।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 5 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी कि दर्द की कहानी को, पीड़ा की कहानी को हम गीतों से, बातों से समझने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

इतनी छोटी सी तो फिलॉसफी है इश्क, बस वही हमें समझ नहीं आती। जब ये समझ आती है तो इश्क करना, इश्क निभाना बहुत आसान हो जाता है। वाकई मैं तो इस गाने को बहुत इंजॉय कर रही थी और डांस भी कर रही थी, और उम्मीद है कि आप भी कर रहे होंगे। जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, उसके लिए जान भी हाजिर कर देते हैं। इससे खूबसूरत फीलिंग दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकती कि हम इश्क में किसी को अपनी जान से ज़्यादा कीमती नहीं समझते। अगला गीत फिर पहुंच जाए आपसे रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में।

अगर प्यार का इजहार इतना सुंदर हो सकता है तो फिर इकरार करने से मना कैसे हो सकता है। अभी आप सुन रहे थे आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ में ये सदाबहार गीत। प्यार में जो मीठी वाली जिद होती है ना, वो अपने आप तभी उसका कोई मायने रखती है जब उसको मानने वाला उसको दिल से निभाता है। उसका मज़ा कुछ और नहीं बल्कि उस गाने में तब आता है जब कही हुई बात, प्रियतम की कही हुई बात को दिल से निभाया जाए। अभी वक्त है आपकी ज़िद मानने का और सुनवाने का एक खूबसूरत गीत। अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में। इससे पहले जो आप गीत सुन रहे थे वो था रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, और अभी जो आप गीत सुन रहे हैं वो भी रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में।

इतनी शिद्दत के साथ हमें आप हमें याद करें और आप हम आए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। इस गाने को सुनते हुए ऐसा लगता है ना कि दुनिया चाहे कितनी भी रंग बिरंगी क्यों ना हो जाए, कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, लेकिन वो ख़ास इंसान अगर साथ ना हो, वो ख़ास इंसान जो हमें पसंद है, जो हमारा प्रिय है, वो हमारे साथ ना हो तो इस दुनिया के सारे रंग फीके लगते हैं, सारी सुंदरता बेमानी सी लगती है। अगला गीत लता जी की आवाज़ में आप ही के लिए।

कितने गलत हैं वो लोग जिन्हें लगता है प्रेम जीवन में हासिल की जाने वाली कोई चीज है। कितने गलत हैं वो लोग जिन्हें लगता है प्रेम जीवन में हासिल की जाने वाली कोई चीज है, जबकि सत्य ये है कि प्रेम ही जीवन है। वक्त हुआ है 2:41 और 36 सेकंड। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

वाकई हमारी जिंदगी भी इस गाने की तरह होती है, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी जिंदगी में हरियाली होगी कि रास्ता होगा, लेकिन इस गाने की जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि हम सफ़र पर अटूट विश्वास जो होता है वो सफ़र को और ज़्यादा यादगार बना देता है, भरोसेमंद बना देता है। जब ज़िंदगी के सफ़र में हाथ थामने वाला कोई ऐसा इंसान हमें मिल जाता है जिस पर हम भरोसा कर सकें, तो यकीन मानिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही. बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी. 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना गोयल. मुझे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयक

0: को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। मंत्रालय ने सभी लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के निर्धारित 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some more parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. While scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said a new chapter is being written in Shivpuri's history yesterday.
2: यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं
3: नॉट ओनली

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, जहां बातें होती हैं दिल की, एहसासों की और उन रिश्तों की जो दूर रहकर भी कभी दूर नहीं होते। कभी कभी जिंदगी हमें अपनों से मीलों दूर कर देती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना दूरी कम कर पाती है और ना समय। आज का हमारा सफर उन सभी लोगों के नाम है जो किसी अपने को याद करते हैं, जो दूर रहकर भी हर पल उनके साथ होने का एहसास करते हैं। कार्यक्रम के साथ मैं आपकी रात की हमसफर अर्चना गोयल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। तो आइए अगले 50 मिनट तक दिल से दिल की बातें करें।

उषा मंगेशकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत था फिल्म चित्रलेखा से। कहते हैं कि सच्चा रिश्ता आवाज़ का मोहताज नहीं होता, वो खामोशियों में भी धड़कता रहता है। कभी माँ की याद अचानक खाना खाने खाते वक्त आ जाती है, तो कभी पिता की सीख किसी मुश्किल मोड़ पर याद आती है। कभी दोस्त की हंसी बिना वजह मुस्कुराहट दे जाती है, और कभी कभी किसी खास इंसान की यादें रात को नींद नहीं आने देती। यही तो वो रिश्ता है जो दूरी से नहीं, दिल से चलता है।

दूर हो तुम फिर भी हर सुबह तुम्हारे नाम से शुरू होती है, हर शाम तुम्हारी याद की रोशनी में ढलती है। ना तुम्हारी आवाज़ हर दिन सुनाई देती है, ना तुम्हारा चेहरा हर पल दिखाई देता है, लेकिन दिल की दुनिया में तुम आज भी सबसे करीब हो, क्योंकि कुछ लोग साथ नहीं होते फिर भी हमेशा साथ रहते हैं।

दोस्तों, ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हर रिश्ता रोज़ मिलकर नहीं निभाया जा सकता। कुछ रिश्ते बातें विश्वास से चलते हैं। अगर आपका कोई अपना दूर है तो आज उसे सिर्फ इतना लिख दीजिए, अपना ख्याल रखना, तुम्हारी कमी महसूस होती है। यकीन मानिए, ये छोटे से शब्द किसी के पूरे दिन को खूबसूरत बना सकते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और हमराही में आप हैं आज अर्चना गोयल के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:32 और ठीक 35 सेकेंड। रात की इस खामोश महफिल में आपका फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि दिल लोगों से हमें मिलवाता है, लेकिन रात हमें खुद से मिलवाती है। दिल की हलचल थम जाती है, मगर दिल की आवाज़ें और सुनाई देने लगती हैं। यादें भी अजीब होती हैं, कभी मुस्कुराने की वजह बन जाती है तो कभी आँखों को नम कर देती हैं। और जब कोई अपना दूर हो तो हर रात थोड़ी लंबी, थोड़ी खामोश और थोड़ी अधूरी लगने लगती है।

कभी आपने महसूस किया है कि रात जितनी गहरी होती जाती है, यादें भी उतनी ही करीब आने लगती हैं। दिन में हम अपने कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन रात दिल की डायरी के सारे पन्ने खोल देती है। फासले चाहे कितने भी हों दरमियान, यादों का सफर कभी रुकता नहीं। जो दिल में बस जाते हैं एक बार, वो रातों में कभी बिछड़ते नहीं।

दोस्तों, रात की खामोशी बहुत कुछ कहती है। अगर ध्यान से सुने तो हवा में भी किसी का नाम सुनाई देता है। चांद भी शायद इसी वजह से हर रात निकलता है कि ताकि दूर बैठे लोग एक ही आसमान देखकर एक दूसरे को महसूस कर सकें। कितना सुंदर है ना एक आसमान, एक चांद और अनगिनत यादें।

इंतज़ार आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे इंतज़ार को भी मोहब्बत का हिस्सा मान लेते हैं। कभी फ़ोन की घंटी का इंतज़ार, कभी एक संदेश का, और कभी सिर्फ इस उम्मीद का कि सामने वाला भी इसी वक्त हमें याद कर रहा होगा। कहते भी हैं कि दूर रहकर भी जो सबसे करीब हो वही रिश्ता सबसे खास होता है।

दोस्तों, आज की रात की महफिल यहीं तक। अगर आपका कोई अपना आपसे दूर है तो आज उसे दिल से एक दुआ ज़रूर दीजिए। हो सकता है आपकी दुआ उसकी रात को रोशन कर दे। याद रखिए, दूरियां रास्तों में होती हैं, रिश्तों में नहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल

0: बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में ट्रस्ट को प्राप्त दान की गिनती की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहले यह बैठक आज दोपहर करीब 3 बजे मडराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब यह बैठक राम मंदिर परिसर में होगी। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some more parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli today. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said, a new chapter is being written in Shivpuri's history yesterday.
2: Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly, and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia.
1: Mr. Scindia said the project will connect the district to industrial development, defence production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from today till 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's 4th visit to Indonesia. Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम के साथ मैं आपकी होस्ट अर्चना गोयल। सुबह के इस पावन वेला में आपका हार्दिक स्वागत और नमस्कार। अरुणिमा एक ऐसा सफर जहां हर सुबह अपने साथ नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आती है। ऐसे ही सकारात्मक विचारों के साथ आइए इस नई सुबह की शुरुआत हम ईश्वर को याद करके करें।

आज का ये नया दिन आपकी अमूल्य दिन है। हमारे मन में अच्छे विचारों का प्रकाश है, हमारी वाणी में मधुरता, कर्मों में ईमानदारी और हृदय में प्रेम का संचार हो, ईश्वर से बस यही प्रार्थना है। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकें। जहां निराशा हो वहां आशा बने, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बने, और जहां दुख हो वहां मुस्कान बांटने का माध्यम बने।

कहते हैं कि हर सुबह ईश्वर हमें एक कोरा पन्ना सौंपते हैं। उस पन्ने पर क्या लिखना है ये हमारे हाथ पे होता है। अगर हम दिन की शुरुआत शिकायतों से करेंगे तो पूरा दिन बोझिल लगेगा, लेकिन यदि शुरुआत कृतज्ञता से होगी तो साधारण दिन भी सुंदर बन जाएगा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। मैं आज आपके साथ अर्चना गोयल। दोस्तों, आज उठते ही एक बार मन ही मन कहिए, हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए आपका धन्यवाद, जो नहीं है उसे पाने का धैर्य भी मुझे दीजिए। बस यही भावना जीवन को हल्का और खुशहाल बना देती है।

सूरज हर सुबह बिना किसी उपेक्षा के उगता है, नदी बिना रुके बहती रहती है, वृक्ष बिना किसी भेदभाव के छाया देते हैं, और प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि देते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का सबसे सुंदर नियम है।

एक बार एक संत से किसी ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो संत मुस्कुराए और बोले, संतोष। जिस दिन मन संतुष्ट होगा, सीख लेता है, उसी दिन से जीवन की आधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आज तुलना नहीं, आभार कीजिए, प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रगति कीजिए, और सबसे पहले स्वयं से प्यार करना सीखिए।

याद रखिए, कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना आए, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो, और कोई भी इंसान इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो फिर से शुरुआत ना कर सके। आज का दिन आपको एक और अवसर दे रहा है, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई मुस्कान के साथ आगे बढ़िए।

स्वागत है एक बार फिर से अरुणिमा में। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने विचारों को सुंदर बनाइए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। हर सुबह अपने आप से केवल 3 बातें कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। इन 3 वाक्यों में पूरे दिन को बदल देने की शक्ति होती है।

चलते चलते आज का सुविचार। हर सुबह यहाँ एक संदेश लेकर आती है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन फिर से मुस्कुराने का अवसर है। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी गीत की तरफ।

फिलहाल अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे आज 3 दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की 4थी यात्रा होगी। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अंतर्गत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टीसू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर को मिले धन की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। ट्रस्ट की बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। असम मंत्रिमंडल ने आज राज्य विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहले आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी में मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। संस्कृति मंत्रालय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा मंत्रालय ने पिछले वर्ष की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चौल के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विभाग ने आज मुंबई समेत कई राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम भोर सुहानी। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम को लेकर मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर सुबह अपने साथ उम्मीदों की नई किरण लेकर आती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए अगले कुछ पलों तक हम सब साथ मिलकर इस खूबसूरत सुबह का स्वागत करें।

दोस्तों, सुबह की पहली किरण जब बादलों की ओट से झांकती है और बारिश की हल्की हल्की बूंदें धरती को प्यार से छूती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें ये संदेश दे रही है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर है।

बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, ये जीवन का एक खूबसूरत एहसास भी है। जैसे सूखी धरती पहली फुहार पाकर महक उठती है, वैसे ही हमारा मन भी अच्छे विचारों की बारिश में खिल उठता है। इसलिए आज का पहला विचार, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि सोच सकारात्मक है तो हर मुश्किल रास्ता भी मंजिल तक पहुंच जाता है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। कभी कभी दोस्तों जीवन में परेशानी रूपी बादल घिरते हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन याद रखिए हर घने बादल के पीछे सूरज मुस्कुरा रहा होता है। बस थोड़ा धैर्य और थोड़ा विश्वास बनाए रखना होता है। आज जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो अपने मन में एक छोटा सा संकल्प जरूर लें, मैं हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करूंगी, मुस्कुराऊंगी और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करूंगी।

बारिश हमें ये सिखाती है कि झुककर बरसने वाले बादल ही धरती को जीवन देते हैं। इसलिए विनम्रता, प्रेम और अपनापन ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए इस सुहानी सुबह का आनंद लेते हैं। गर्मा गर्म चाय की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक और मन में ढेर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं।